FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 सितंबर सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:59 हो

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने को है अब।
1: अठारवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो।

0: और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे परमपिता परमात्मा, इस संसार सागर में प्रत्येक मानव किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखी है, किंतु इन सभी दुखों से पार पाने का साधन सिर्फ और सिर्फ आपकी शरण है। हे सर्वेश्वर, हमें अपनी शरण में लीजिए।

इस नश्वर संसार में सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। मानव अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता, किंतु उसे जीवन पर्यंत ये अहंकार रहता है कि ये मेरा है। हे मानव, तू अपनी आंखें खोल। इस संसार में कुछ भी तेरा नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम ही तेरा है। इसीलिए अपने नित्य कर्मों को करते हुए ईश्वर को सदैव स्मरण कर।

0: संवेद सुरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे अनुराधा पौडवाल, हरिओम शरण, उदित नारायण, गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा, कौशलेंद्र शर्मा और राघवेंद्र शर्मा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत सुब्रमण्यम भारती के विचार। वाचन कर रही हैं ऋतु राजपूत।
1: राष्ट्रीयता की भावना, प्रकृति के प्रति प्रेम, लौकिक और अलौकिक सृष्टि में व्याप्त सत्य की अनुभूतियां हिलौरी लिया करती थी। उनका कहना था, इस भारत भूमि पर जिसने भी जन्म लिया है वो तो जन्म से ही महान है। सभी जाति, सभी धर्म, समस्त मानव समान हैं। हम जाति धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके ये विचार आज हमें बार बार याद दिलाते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र प्रेम पवित्रतम। भारती जी के राष्ट्र प्रेम का अर्थ है देश की मिट्टी के कण कण से प्रेम, इसकी नदियों, इसके पर्वतों, पशु पक्षियों से प्रेम, सर्वधर्म संभाव तथा सर्वात्म भाव। यही मूल मंत्र है राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। आज हम स्वयं को स्वतंत्र कहते हैं, पर अभी भी हम जातिगत धर्मगत विचारधाराओं के गुलाम हैं। क्या धर्मांधता, कुरीतियों, व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त होने पर भी हमें स्वयं को स्वतंत्र कहने का अधिकार है? नहीं, स्वतंत्रता का ये अर्थ कदापि नहीं है। स्वतंत्रता के संबंध में भारती जी के विचार थे, वास्तविक स्वतंत्रता वो है जब न कोई दीन रहेगा न दास। भारत में ऐसा कोई ना होगा जो जन्म से छोटा या बड़ा हो। प्रत्येक को विद्यावान और धनी होने का अधिकार होगा। सभी एक सूत्र में बंधकर सानंद रह सकेंगे। इस देश में सब नर नारी समान स्तर पर होंगे और यही हमारी सच्ची आजादी होगी। जीवन के संबंध में उनका कथन था, जीवन तो बुलबुलों के समान क्षणिक है। जैसे जन्म हुआ है वैसे ही मृत्यु भी निश्चित है। जब मृत्यु ही शाश्वत सत्य है तब कि उस परम शक्ति को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। भारती जी ने एक बार कहा था, कोई तुम्हें प्रकृति कहता है, कोई तुम्हें पंच तत्वों में देखता है, कोई तुम्हें मानता है आद्य शक्ति, कोई तुम्हें अग्नि, ज्ञान या प्रभु कहता है। इन शब्दों से भारती जी का आशय शक्ति के मूल में व्याप्त एकत्व के दर्शन करना है, जो हमें आज भी भिन्नता में एकता का संदेश देता है। उनकी दृष्टि में परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, पर पीड़न पाप है। एकता का ध्यान ही पुण्य है और अनेकता देखना ही पाप। दूसरों से प्रेम करना पुण्य है और घृणा करना पाप।

चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार सुब्रमण्यम भारती के, वाचन कर रही थी ऋतु राजपूत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़ कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर सुरेश वाडेकर का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती। रात्रि 10 बजे का समय रहेगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे 6:50 से। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें। विषय होगा पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे। प्रातः 7 बजे आनंद लेंगे भूले बिसरे गीतों का। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का पाक्षिक विवरण परकम्मा के अंतर्गत। साथ ही सुनेंगे लोकगीत। प्रातः 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आपसे मिलिए इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता राष्ट्रीय लोक अदालत उद्देश्य एवं लाभ विषय पर। अनीता सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भेंट करेंगे ओपी सिंह। प्रातः 9:30 का समय रहेगा ब्रज दर्पण कार्यक्रम का। प्रातः 10 बजे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे डीआर पार्वतीकर का दत्तात्रेय वीणा वादन और डीएल काबरा का सरोद वादन। प्रातः 10:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 से आप सुनेंगे रांझा गायन भगवान दास अज्ञानी के स्वर में। 1:15 का समय रहेगा बहनों के कार्यक्रम घर अंगना का। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा संतुलित आहार में छिपो है परिवार की खुशियन को खजानो और शिक्षा हमारी सबसे आवश्यक आवश्यकता। साथ ही होगी भेंट वार्ता पोषण माह। बुद्धि मिश्रा से भेंट करेंगे जितेंद्र सिंह। साथ ही आनंद लेंगे लोकगीतों का। 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:30 से होगा दूसरी सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात होगी दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर। साथ ही बात करेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुण्यतिथि पर और सुनेंगे नए जमाने के गाने। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा में कालिया मर्दन का प्रसंग। कथाकार होंगे रमेश चंद्र शर्मा। संध्या वंदन ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:30 से। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी होगा 7:31 पर। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुहाने तराने। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम पशुओं में टीकाकरण कब करें और कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देंगे। पशुपालन हमारे पशुपालक भाइयों की आय का

0: एक प्रमुख साधन है। भारत में लगभग 70% जनता कृषि व पशुपालन पर निर्भर करती है, या कहा जा सकता है कि भारत की जनता का एक बहुत बड़ा भाग अपनी दिनचर्या के लिए पशुपालन पर निर्भर होता है। इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वह अपने पशुओं के स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखें। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि पशुपालक अपने पशुओं में कितने समय अंतराल पर व किस किस बीमारी के लिए टीकाकरण कराए, क्योंकि संक्रामक रोग न केवल दुग्ध उत्पादन घटाते हैं बल्कि रोग होने पर और समय से चिकित्सा के अभाव में पशु के लिए ये जानलेवा सिद्ध होते हैं। आइए बात करते हैं उन विभिन्न रोगों की जिनका टीकाकरण कराना हमारे पशुपालक भाइयों के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम बात करते हैं खुरपका मुंहपका रोग के बारे में। इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जन्म के उपरांत 4 से 6 माह के बाद करवाएं व नवंबर से दिसंबर के बीच वार्षिक टीका लगवाएं। टीके की मात्रा लगभग 5 मिलीलीटर रखी जाती है तथा टीका त्वचा के अंदर लगवाएं। इस टीके की प्रतिरोधक क्षमता लगभग 15 दिन में स्थापित हो जाती है तथा 6 से 8 महीने तक चलती रहती है। इसके बाद दूसरा टीकाकरण करवाएं। खुरपका मुंहपका बीमारी के बचने के लिए प्रमुख टीके हैं रक्षा FMD, रक्षा ओवेक इत्यादि। दूसरा प्रमुख रोग है गलघोंटू रोग। इस रोग से बचाव के लिए जन्म के उपरांत 6 माह बाद टीकाकरण करवाएं व साल में एक बार मानसून आने से पूर्व टीका अवश्य लगवाएं। टीके की मात्रा 2 से 5 मिलीलीटर तक होती है तथा टीका त्वचा के अंदर लगाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता 21 दिन में स्थापित होती है तथा 1 साल तक चलती है। इसके बाद पुनः टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। गलघोंटू रोग से बचाव के लिए रक्षा HS, एलम, प्रेसिपिटेटेड इत्यादि टीके प्रमुख रूप से लगाए जाते हैं। रिंडरपेस्ट रोग का टीकाकरण भी आवश्यक है। इस रोग का टीका भी जन्म के उपरांत 4 से 6 माह तक लगवाए जाते हैं तथा शरद ऋतु में वार्षिक टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर त्वचा के अंदर लगवाएं। इसकी प्रतिरोधक क्षमता लगभग 2 से 3 साल तक रहती है। इसके बाद पुनः टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। ब्लैक क्वार्टर रोग का टीकाकरण जन्म के उपरांत 6 माह के बाद करवाएं तथा वार्षिक डोज सालाना मानसून आने से पहले लगवाएं। टीके की मात्रा 2 से 5 मिलीलीटर तक रहती है, जो कि टीके के प्रकार व पशु के वजन पर निर्भर करती है। इस टीके की प्रतिरोधक क्षमता 15 दिनों में स्थापित हो जाती है तथा 1 साल तक चलती है। इसके बाद पुनः टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। एंथ्रेक्स बीमारी का टीकाकरण भी जन्म के 4 से 6 माह के बाद अवश्य लगवाना चाहिए। एंथ्रेक्स का टीकाकरण उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिस क्षेत्र में इस बीमारी का ज्यादा प्रभाव होता है। वार्षिक टीकाकरण फरवरी से मई तक करवाएं। टीके की मात्रा 1 मिलीलीटर तक त्वचा के अंदर लगवाएं। इसकी प्रतिरोध क्षमता 10 दिन में स्थापित हो जाती है तथा लगभग 1 साल तक चलती रहती है। ब्रूसेलोसिस या संक्रामक गर्भपात बीमारी के लिए साधारणतः टीका 6 से 9 माह की बछिया को करवाएं। आवश्यकता पड़ने पर परिपक्व पशुओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 2 से 5 मिलीलीटर की मात्रा में टीका लगवाएं तथा इसकी प्रतिरोध क्षमता प्रथम व द्वितीय गर्भकाल तक चलती है। इसके बाद पुनः टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। एंट्रोटॉक्सिमिया बीमारी का टीकाकरण 4 माह की आयु पर करवाएं तथा 15 दिनों के बाद दूसरी मात्रा लगवाएं। टीके की मात्रा लगभग 2 मिलीलीटर तक रखें। एंट्रोटॉक्सिमिया का टीकाकरण मानसून से पहले मई के माह में करवाना अच्छा रहता है। PPR रोग हमारे क्षेत्र में बहुतायत से होता है। इस रोग की टीकाकरण 3 माह या इससे ऊपर की आयु के मेमनों में करवाएं। PPR का टीकाकरण प्रत्येक 3 साल बाद अवश्य कराना चाहिए। इसके अलावा रेबीज का टीकाकरण रोग के होने से पूर्व पहले दिन, उसके बाद 7वें दिन, फिर 21वें दिन पर करवाएं। यदि रोग हो गया है तो पहली मात्रा तुरंत रोग के बाद फिर 3रे, 7वें, 14वें, 30वें और 90 दिनों पर करवाएं। इस प्रकार टीकाकरण करके पशुपालक भाई अपने पशु की विभिन्न संक्रामक रोगों से रक्षा कर सकते हैं।
1: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे। जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म फागुन में। शब्द कमर जलालाबादी के हैं, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत। धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, शब्दों से सजाया आनंद बख्शी ने। फिल्म थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनहोनी में। इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 हो रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश। कहा केवल पैचवर्क तक सीमित न रहे गड्ढा मुक्ति का काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जाना हाल। कहा 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे स्वास्थ्य शिविर। भारत ने HPV टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार। 22 लाख टीकाकरण के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 25 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रभावित इलाकों में निगरानी, बचाव और राहत कार्य तेज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत करके उन्हें आवागमन के योग्य बनाने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पर्वों और त्योहारों में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। ऐसे में प्रमुख मार्गों पर आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में त्योहारों से पहले सड़कों की मरम्मत और जहां आवश्यक हो वहां नवीनीकरण के कार्य हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्ति का काम केवल पैच वर्क तक सीमित न रहे। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में 681 महत्वपूर्ण मार्ग चिन्हित किए गए हैं। क्षतिग्रस्त मार्गों का सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के बाद मरम्मत और नवीनीकरण के लिए विभागवार लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। समाचार कक्ष से रितेश।
0: समीक्षा बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले गोमती पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे। कल लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि ये मेला लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि पुस्तक मेले में 250 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां 120 से अधिक प्रकाशक अपनी किताबों को प्रदर्शित करेंगे।
2: 250 से ज्यादा यहाँ बुकस्टॉल्स लगे हुए हैं। वंदे मातरम का 150 वर्ष को लेकर एक यहाँ स्पेशल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इन सब के अलावा आप देखेंगे तो हर रोज बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं, हर रोज कल्चरल एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने का, रूबरू होने का अलग मौका है। तो अपने आप में एक कम्प्लीट पैकेज है जिसमें आप इसका आकर लाभ ले सकते हैं।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाली गतिविधियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सेवा, स्वास्थ्य और जन कल्याण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत 17 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।
3: जो सेवा संकल्प अभियान है इसको हम सब धरातल पर उतारेंगे। केंद्र और प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और इसके अलावा सबसे बड़ा एक मुहिम हम चलाएंगे कि प्रदेश में हेल्थ कैंप्स के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति उपचार लेना चाहता है तो वो आए। वहां पर सभी प्रकार की जांचें होंगी, सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि किसी को अन्य टर्शरी केयर की आवश्यकता है या कोई बड़ा ऑपरेशन है तो हमारे हेल्थ कैंप में जांच करा करके वो बड़े अस्पताल में उनको रिफर करके हम चिकित्सा सुविधा सभी प्रकार की उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम लोगों के लंबित मामलों का निस्तारण करना है। लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके तहत मोटर वाहन, पारिवारिक, राजस्व सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।

0: भारत ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22 लाख किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किया था। अभियान के तहत 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों को माता पिता की सहमति से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वैच्छिक और निशुल्क एकल खुराक HPV टीकाकरण प्रदान किया जाता है। ये HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकेंड से कम करना है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में कल वाराणसी में EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी पहले चरण की जांच को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सुपरवाइजर शामिल हुए। कार्यशाला में अधिकारियों को EVM की जांच से लेकर मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
1: यहाँ से जाने के बाद ये अधिकारी फर्स्ट लेवल चेकिंग कराए। फर्स्ट लेवल चेकिंग का अर्थ है कि ये जो मशीनें हैं इनको हम इलेक्शन में इनका प्रयोग करने से पहले एक एक मशीन को, एक एक यूनिट को, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो, VVPAT हो, उसको चेक करके सुनिश्चित करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है। और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी लिखित में सूचना देकर आमंत्रित करते हैं ताकि वो स्वयं उपस्थित रह सकें।
0: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी, बचाव और राहत कार्य तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है और लगभग 3,000 लोगों ने फिलहाल राहत शिविरों में शरण ली है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1,100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में कल खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश। कहा, केवल पैचवर्क तक सीमित न रहें गड्ढा मुक्ति का काम। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जाना हाल। कहा, 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे स्वास्थ्य शिविर। भारत ने HPV टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार। 22 लाख टीकाकरण के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 25 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रभावित इलाकों में निगरानी, बचाव और राहत कार्य तेज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए। स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार यानी 14 सितंबर 2026 में 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-25-30-135 पर फोन करके, फोन नंबर एक बार पुनः सुन लें, 0565-25-30-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-12-22-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। श्रोताओं, यदि आप बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं जैसे लगातार सर्दी जुकाम, साइनस, नाक की एलर्जी और नाक का बंद रहना या मांस बढ़ना, कान बहना, कम सुनाई देना या बहरापन, कान में अजीब आवाजें आना और चक्कर आना, टॉन्सिल और एडेनॉइड की समस्या, गले में खराश या दर्द, गले में संक्रमण, आवाज बैठना और निगलने में कठिनाई, स्लीप एपनिया यानी नींद में सांस रुकना, खर्राटे, थायराइड की असामान्यताएं और सिर व गर्दन क्षेत्र की गांठें या ट्यूमर आदि के समाधान के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर निशांत गुप्ता से। कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 14 सितंबर 2026 और समय रहेगा 1:15। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता साथिन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया, आज के कार्यक्रम को आरंभ करें हैं ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के पाक्षिक विवरण परकम्माते। जाए हमारे ताई लेके आए हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार।
1: जा पाक्षिक में ब्रज में अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां भई, विशेषकर जैसे भगवान श्री कृष्ण को जन्मोजयी पक्ष में भयो और अन्य कार्यक्रमों धार्मिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धूमधाम से मनाई गई। शुरुआत से अगर हम बात करें तो जापक्ष में शुरुआत ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सरकारी और गैर सरकारी विभागन में सरकारी अधिकारियों और लोगों ने जाके राखी बांधी। जाके अलावा घर घर रक्षाबंधन को त्यौहार मनाया गयो, स्कूली बालिकाओं ने अपने भैया ने राखी बांधी और सामाजिक तौर पे जो सार्वजनिक कार्यक्रम भए वहाँ पे राखी बंधन को ये कार्यक्रम चलो। वृंदावन में बात करें तो जानकी वल्लभ मंदिर वृंदावन में गुरु प्राप्ति महोत्सव को आयोजन शुरू में भयो, जा अवसर पे श्रद्धा भक्ति के साथ कार्यक्रम संपन्न भए। विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त करे। स्वामी अनुरुद्धाचार्य महाराज के सानिध्य में भयो जे आयोजन में गुरु स्मरण, वेदांत चिंतन, भक्ति की त्रिवेणी देखने को मिली। सावन की फुहारों, मल्हारों, भक्ति की रसमई छटा के बीच नंदगाम में जो श्री कृष्ण बलराम हिंडोला उत्सव भयो बाको समापन हु जय पक्ष में भयो। अंतिम दिना फूलन ते सजे भव्य हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी के मनोहारी दर्शन भये। उल्लेखनीय है कि नंदगांव की सेवा में गोस्वामी समाज की प्राचीन गायन परंपरा जुड़ी भई है। सावन के गीत, मल्हार और पदन को रसमय वातावरण में गायन जा अवसर पर भयो। जई तरीका थे दाऊजी में एकादशी से पूर्णिमा तक चले हिंडोला महोत्सव को विश्राम भयो, जा दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान के भव्य हिंडोले के दर्शन करे, सेवा भाव से झूला झुलायो। ब्रज के अन्य मंदिर में भी हिंडोला उत्सव को समापन भयो और भक्तों ने हिंडोले के दर्शन कर हिंडोले में भगवान जी बैठे दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ करो। बरसाना के ब्रसवान कुंड में प्रिया प्रियतम के नौका बिहार लीला के दर्शन हुए काजें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कुंड के शांत जल में सजी नौका पर विराजमान राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के मनोहारी स्वरूप के दर्शन के काजें भक्त में बड़ा उत्साह रहो। जाई अवसर पर बाजार में श्यामा श्याम मंदिर तक प्रिया प्रियतम के डोले को लेके शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु ने उत्साहपूर्वक भाग लियो, जा धार्मिक आयोजन को आनंद भयो और विश्राम भयो। मथुरा वृंदावन में पत्थरपुरा की बड़ी सूरमा कुंज में श्री गौड़ीय वैष्णव हरिदास महाराज के 10 दिवसीय नित्य निकुंज के अंतर्गत संत विद्वज्जन को आयोजन भयो, जा अवसर पर संत और विद्वानों ने स्वामी हरिदास महाराज के जीवन को मानव समाज के काजे प्रेरणा स्रोत बतायो। सम्मेलन में संत गोविंद तीर्थ महाराज ने कहो कि संत प्रवर अपना संपूर्ण जीवन गुरु भक्ति और भागवत साधना में व्यतीत करो, उनके जीवन से समाज को भक्ति साधना सेवा की प्रेरणा मिलती है। सम्मेलन में महंत सुंदरदास महाराज, स्वामी भानुदेवाचार्य, महेंद्र जगन्नाथ, महंत मोहिनी शरण, पूर्व प्राचार्य राम सुदर्शन मिश्र समेत अनेक संत और विद्वान उपस्थित हुए। अग्र बंधु सेवा मंडल को नवम स्थापना दिवस मसानी रोड स्थित अग्रवाल सभा भवन में भयो, जहाँ अवसर पर भजन गायन सम्मान समारोह का आयोजन भयो और मंडली के कलाकार ने भजन गाए। संस्थापक चिराग अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारी ने व्यवस्था संभाली। समाज सेवा के कारणों को दायरा बढ़ावे के काजे उन लोगों ने संकल्प लयो। जई पाक्षिक में विशेष जो आयोजन भयो वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को 4 सितंबर को समूचे ब्रज में मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। श्रद्धा और भक्ति का उल्लास को हर जगह

0: माहौल देखो गयो, बड़ी संख्या में बाहर के श्रद्धालु मथुरा पधारे, श्री के जन्मस्थली के दर्शन करे। जा अवसर पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से अनेक स्थानों पर छोटे मंच बनाए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करो गयो। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव, नंदगाम समेत अन्य जो ब्रज के स्थल हैं वहाँ पर तीर्थ विकास परिषद ने सार्वजनिक मंच बनाए। उन मंचन पर कलाकारों भगवान श्री कृष्ण के भजन, जन्म की लीला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से वातावरण पूरी तरह कृष्णमय बना दियो। जन्म की खुशी में श्रद्धालु मध्य रात्रि तक भजन पर झूमते रहे और नृत्य करते रहे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित भागवत भवन में भगवान कृष्ण के दर्शन पूजा अर्चना करी। जन्माष्टमी के अगले दिन नंदगांव, गोकुल और ब्रज के अन्य मंदिर में नंदोत्सव को आयोजन भयो। जा अवसर पर श्रद्धालुओं ने खिचड़ी प्रसाद वितरित करे गयो और कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। एक शोभा यात्रा विशेष रही जो श्री कृष्ण जन्म स्थान से उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने निकाली, जा में बड़े संत जाके अलावा आसपास के श्रद्धालु और उन भाग लयो और सांस्कृतिक कलाकार भी अपनी प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। गोकुल के नंद भवन और नंद किला मंदिर में छठी पूजन को आयोजन जा पक्ष में भयो। जन्माष्टमी के अवसर पर द्वारकाधीश मंदिर सहित ब्रज के कई मंदिर में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जय घोष गूंजते रहे। चांदी के पालने में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन करवे के काजे श्रद्धालु उमड़े। भक्तन पे मंदिर के सेवायतनों फल और फूल आभूषण मिष्ठान प्रसादी लुटाई। बरसाना, रावल, नंदगांव, बलदेव, गोकुल समेत ब्रज के अन्य तीर्थ स्थलों पर नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति को पंच दिवसीय महोत्सव नंदोत्सव के संग संपन्न भयो। ये आयोजन ब्रज कला केंद्र मसानी पे करे गयो, जहाँ में स्थानीय और बाहर के कलाकारों भजन नृत्य नाट्य मंडल के माध्यम से जन्म की खुशी के कार्यक्रम मनाई। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल, राजेंद्र खंडेलवाल, प्रेम अग्रवाल, दीपक गोरा, अजय चतुर्वेदी समेत अनेक पदाधिकारी शामिल भये। 7 सितंबर को जो कार्यक्रम भयो वो बड़ा उल्लेखनीय है और बड़ा स्मरणीय भयो। जादना वृंदावन के गीता शोध संस्थान में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से 3 दिवसीय श्री कृष्ण राष्ट्रीय चित्रांकन शिविर का आयोजन भयो। जा शुरुआत में ख्याति प्राप्त चित्रकार नकों काजे कैनवास दे गए और रंग की किट दी गई। फिर उन्होंने 9 तारीख तक बहुत सुंदर और मनोरम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन करो। वो चित्र गीता सुसंतान में अब प्रदर्शनी के रूप में देखवे लोग पहुंच रहे हैं। जाको समापन सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी जी ने चित्रों के अवलोकन और चित्रकारों की सराहना की, अपने संस्मरण भी साझा करे। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी 20 चित्रकारों को बहुत बहुत बधाई दी और उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद जा तरीका के कला और संस्कृति के जा आयोजन है भविष्य में भी निरंतर जारी रखेगा और जाको दायरा बढ़ेगा। शिविर में ग्रेटर नोएडा की कंचन प्रकाश ने बज्जिका शैली में भगवान कृष्ण की लीला को चित्रांकन करो। पटना की अलका दास ने मिथिला शैली में और पद्मश्री शांति देवी ने मधुबनी कला शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीला को चित्रांकन करो। दिल्ली की सुमित्रा अहलावत समेत कई अन्य चित्रकारों अपनी अपनी विशिष्ट शैली में आकर्षक व मनोहारी चित्र बनाई। अब इन चित्र की प्रदर्शनी गीता शोध संस्थान में लगाई गई है। जा संबंध में संस्थान के समन्वयक चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार ने बताया कि जा अवसर पर अत्यंत परिणामदायक स्थिति बनी। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों, कला प्रेमियों को आमंत्रित किया जागो ताकि वे भगवान श्री कृष्ण की लीला पर बने इन कलाकृति ने देख सकें। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रज में कई स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन भयो। इनमें बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहर से आए श्रद्धालुओं कथा श्रवण करो।
1: तो भैया परिक्रमा के अंतर्गत अभी आपने सुनी ब्रज की साहित्यिक और

सांस्कृतिक गतिविधियों को पाक्षिक विवरण जय हमारे ताई लेके आए चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार। आओ भैया अब आनंद लें या लोकगीत को। जय स्वर दियो है मनमोहन कौशिक ने।

तो भैया माधुरी शर्मा के स्वर में अभी सुनियो आपने ये लोकगीत और याई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं हुए है संपन्न। स्वीकार करो हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

0: से नई दिल्ली में शुरू दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदाशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति कासिम फेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
2: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
4: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
3: वसुदेव कुटुंबकम
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
8: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच बढ़ाने बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्व

0: महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
0: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी, पुतिन, फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, GDP आंकड़ों पर IMF की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा, IIP और PPI की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में $45 अरब की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, MRP बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS summit to begin in

बड़ा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आलमी रहनुमा इस दो रोज़ा तकरीब में अपने मुज़ाकरात में आलमी हुक्मरानी, तिजारत, सलामती और सप्लाई चेन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग और ब्रिक्स के दीगर रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में गुलाम फिल्म का ये गीत। शब्द रचना समीर की है, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म लज्जा में, बोल समीर के थे, संगीत दिया था अनु मलिक ने।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।

0: दस लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में पुकार फिल्म का ये गीत। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत दिया है AR रहमान ने।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म मेजर साहब में। शब्द आनंदराज आनंद के थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम। स्वर अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के हैं। शब्द रचना समीर की है, संगीत दिया है निखिल विजय ने।

0: जो एक साधन है जन सामान्य को न्याय पाने में सुगमता से, आसानी से, सस्ता न्याय मिल सके, इसके लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं, हर माह लगाई जाती हैं। तो और क्या इसके उद्देश्य हैं, कैसे इस प्रक्रिया में हम शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, इनके निर्णयों की क्या वैधता है, और एक व्यक्ति कैसे इसका लाभ पा सकता है, ये आज हमारे सामान्य प्रश्न है। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार
1: नमस्कार।
0: जी। तो ये जो लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, इसमें इनके पीछे अगर हम उद्देश्य जानना चाहें एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहा है व्यक्ति, वो कैसे इससे जुड़ सकता है, इस पर थोड़ा सा बताइए कि इनके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है।
1: लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो इस समय मतलब जो लंबित मामले हैं
0: जी।
1: वो बहुत अधिक संख्या में हैं। पूरे देश में इस चीज़ की एक व्यापक स्तर पर पहल चल रही है। ये पहल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरुआत की गई
0: जी।
1: और आज तक ये चलती आ रही है। इसका मुख्यतः उद्देश्य ये है कि ताकि मामले को आपसी समझौते के आधार पर और सुलह के आधार पर निस्तारित किया जा सके, ताकि लोग कम समय में और शीघ्रता से न्याय प्राप्त कर सकें।
0: जी
1: और
0: जी
1: जो मामले लंबित हैं उनको हम जैसे कि प्रति हम जान रहे हैं कि यहाँ पर एक रेशियो नहीं बन पा रहा है कि एक जज के पास कई मामले हैं, मतलब पेंडेंसी हजारों की, 10 हजारों की पेंडेंसी एक जज के पास है, जो मामले वो निस्तारित नहीं कर पा रहे। और छोटे मामले जो शमनीय प्रकृति के मामले हैं, इतने मामलों के लंबित होने के कारण उन पर ध्यान भी नहीं जा पाता कई बार। तो इसीलिए इस एक ये एक ऐसा अवसर है जिस पर आप स्वयं उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में मामले को निस्तारित करा सकते हैं और आपसी सुलह समझौते के आधार पर। और ऐसे मामले जिनको आप बैठकर आसानी से निस्तारित करा सकते हैं उनको इसमें शामिल किया
0: मतलब
1: जाता है।
0: एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो अदालतों में समय लग रहा है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, तो उसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मेरी और सामने वाले की सहमति बन
1: जी
0: सकती है, तो
1: बिल्कुल
0: हम क्यों ना
1: बिल्कुल
0: इसको जो है अपनी
1: जी
0: आपसी सहमति से।
1: जी
0: तो इसमें
1: बिल्कुल
0: क्या प्रक्रिया क्या रहती है, वो अदालत में जाके इसकी एक आवेदन करता है इसमें।
1: नहीं, उस दिन ऐसा होता है किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। आप
0: जी।
1: वहां जाकर पता करिए कि हमारा ये जो है मामला है जिस संबंधित कोर्ट में, जैसे मान लीजिए इसमें, मैं पहले इससे पहले बताना चाहूंगी कि
0: जी
1: कैसे मामले इसमें
0: जी
1: शामिल
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तब के
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: इसमें सभी प्रकार के जो आपराधिक मामले जो शमनीय प्रकृति के हैं, शमनीय प्रकृति से मतलब जो केवल 2 साल तक के अपराध से संबंधित हैं, वो सभी मामले इसमें शामिल हो जाते हैं।
0: जी।
1: इसके अलावा चेक बाउंस एनआई एक्ट से संबंधित मामले, बैंक रिकवरी से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद से संबंधित मामले, श्रमराज से संबंधित मामले, बिजली व नल बिल से संबंधित मामले, वैवाहिक पारिवारिक मामले, भूमि भूमि से रिलेटेड मामले और सेवानिवृत्ति के परिलाभों से संबंधित मामले, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद और वैवाहिक प्रकृति के सभी वाद इसमें
0: जी।
1: शामिल हैं।
0: मतलब जो छोटी छोटी चीजें जीवन में जो आती
1: हाँ,
0: हैं कि हम
1: कठिनाइयाँ आ
0: गए,
1: रही
0: हमारा
1: हैं।
0: चालान हो गया तो वो
1: हाँ
0: पेंडिंग पड़ा
1: हाँ
0: हुआ
1: हाँ
0: है,
1: वो
0: परिवार में कोई हो
1: परिवार
0: गया
1: के
0: या कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें
1: जी
0: एक्सीडेंटल
1: जी
0: केस
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: बहुत सारी पॉलिसीगत चीज़ें होती हैं। तो डे टू डे की जो जीवन में चीज़ें उठती हैं और लीगल
1: जी
0: रूप ले
1: जी
0: लेती हैं, उनका हम इसमें
1: इसमें
0: समाधान
1: समाधान करते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं। उसमें उसकी बात कर रहे थे कि प्रक्रिया क्या रहती है
1: हाँ,
0: इसमें। जी
1: ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है प्रत्येक 3 महीने में आयोजित की जाती है।
0: जी
1: वर्ष में 4 लोक अदालतें आयोजित होती हैं। ये हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को ये बहुत अच्छा एक अवसर है कि वो इसका लाभ ले सकता है कि प्रत्येक 3 माह में ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है व्यापक स्तर पर। और साथ ही प्रक्रिया इसमें यह है कि अगर आप जैसे सुगमता से चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले उस न्यायालय में जिसमें आपका मामला लंबित है उसमें लोक अदालत से 1-2 दिन पहले चले जाइए, वहां प्रार्थना पत्र दे दीजिए, तो आपका मामला जो है वो लोक अदालत वाले दिन
0: वहां पर वहां
1: लगा दिया
0: सूचीबद्ध हो
1: जाए,
0: जाएगा।
1: सूचीबद्ध हो जाएगा। और अन्यथा की दशा में भी अगर यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उस दिनांक पर जाइए और दोनों पक्ष यदि समझौते के लिए तैयार हैं, जैसे सिविल मामले संबंधित मामला है
0: जी जी
1: तो दोनों पक्ष जो परिवादी और प्रतिवादी हैं वो दोनों न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और ये अपना कथन देते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें कि हम समझौते के आधार पर अपना मामला निस्तारित कराना चाहते हैं और ये हमारी शर्त है और हम दोनों को मंजूर है। तो उस डेट पे यदि वो फाइल लगी भी नहीं है तब भी सबसे अच्छी बात ये है कि उस डेट पर वो फाइल

0: मन फिल्म में अभी आप सुन रहे थे हिमा सरदेसाई और उदित नारायण को। बोल समीर के थे, संगीत से सजाया था संजीव दर्शन ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपसे मिलिए क्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, राष्ट्रीय लोक अदालत उद्देश्य एवं लाभ। अनीता सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: आपसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अनीता सिंह जी, जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा में। राष्ट्रीय लोक अदालत

0: वो भी ना, तब भी कोर्ट उस डेट पे उस फाइल को निस्तारित कर सकती
1: अगर
0: है।
1: आप गए हैं तो आपके
0: आपके
1: साथ कोर्ट खड़ा हुआ
0: खड़ा
1: है,
0: है।
1: खड़ा हुआ है।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कोर्ट उस दिन आपके लिए प्रॉपर, मतलब कोई बीच अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे भी जाते हैं तो भी आपकी बात सुन ली जाएगी।
1: जी जी जी तो वो जो निर्णय होता है आपसी सहमति से, हमने वहाँ सूचीबद्ध कराया या उस दिन चले गए, सहमति पत्र दे दिया, फिर वो एक तरह से जो जजमेंट होता है वो लिखा जाता है, उसकी वैधता बनी उतनी है जितना कोर्ट में होती है।
0: जी बिल्कुल, जो ऑर्डर होता है उसकी वैधता वही है जो एक ऑर्डर न्यायालय द्वारा किया जाता है। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि उस ऑर्डर की अपील नहीं होती है, उस
1: क्योंकि आपसी सहमति से
0: आपसी
1: वो,
0: सहमति से होता है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती।
1: हाँ,
0: और जो मामले उस दिन निस्तारित होते हैं उसकी कोर्ट फीस भी जो होती है वो भी आपको
1: वो
0: वापस मिल जाती है। जैसे
1: मामा।
0: मान लीजिए कोई सिविल मामला उस दिन आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित होता है, तो लोक अदालत में जो मामले निस्तारित हो रहे हैं उसके बाद आप प्रार्थना पत्र देते हैं उसी न्यायालय में, तो न्यायालय आपका कोर्ट फीस
1: माफ कर
0: माफ
1: देगा,
0: कर देता है
1: माफ
0: और वो
1: कर
0: कोर्ट फीस आपकी वापस हो
1: जी।
0: जाती है।
1: तो इतनी अच्छी प्रक्रिया और बरसों से चल रही है, और आपने कहा कि हर साल में 4 बार ये होता है, 3 महीने में एक बार ये मौका आता है, व्यक्ति मतलब सुगमता से भी मिल रहा है, सरलता से भी मिल रहा है, बिना फीस के मिल रहा है, आपसी सहमति से मिल रहा है, तो व्यक्ति इसका लाभ लेने में चूक कहाँ हो रही है? कोई ये मतलब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, व्यक्तियों तक ये मैसेज अभी पहुँच नहीं पा रहा, बावजूद इसके कि आप लोग बहुत इसका कोशिश कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि शहर में भी जो जो भी चौराहे हैं, जो भी वो हैं, वहाँ लाउडस्पीकर से सूचनाएं होती रहती हैं, तो एक व्यक्ति के मन में क्या है कि वो इस इन चीज़ों का लाभ क्यों नहीं ले पा रहा है इसमें?
0: जी बिल्कुल, हम मतलब ये जो लोक अदालत है वो प्रशासन और न्यायपालिका के सम्मिलित प्रयासों से आयोजित की जाती है, और जिसमें व्यापक स्तर पर मामले निस्तारित किए जाने के लिए हम समय समय पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी करते हैं। साथ ही हम सोशल मीडिया आजकल चल रही है उस पर भी, और प्रिंट मीडिया, अन्य मीडिया जो
1: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ जी जी
0: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साधनों से हम प्रॉपर प्रचार प्रसार करते हैं, फिर भी ना जाने क्यों ऐसा रह जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कई बार मतलब कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं होती, या लोगों को नॉलेज होती है तो मतलब कहीं ना कहीं एक पक्ष
1: एक झिझक
0: अधिवक्ता
1: सी
0: गण,
1: है।
0: हाँ झिझक
1: हाँ
0: सी गण, झिझक
1: हाँ
0: है, और थोड़ा सा अधिवक्ता गण को भी हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी अधिवक्ता गण हैं वो अपनी पार्टीज को मतलब समझाएं और इसके लिए प्रोत्साहित करें
1: प्रोत्साहित
0: कि वो
1: करें।
0: समझौते के आधार पर मामले निस्तारित करें। कई बार ये होता है कि मिसकम्युनिकेशन, या मतलब जो भी मामला निस्तारित भी होना चाहता है लेकिन अधिवक्ता कई बार इस तरीके से प्रयास करते हैं कि
1: कि
0: वो
1: वो और लंबा
0: और
1: चले।
0: लंबा चल जाए, तो वो
1: हाँ,
0: मतलब वो चीज़ पेंडिंग रह
1: तो एक
0: जाती है।
1: व्यक्ति को
0: तो
1: अपने इतनी ये समझना चाहिए कि
0: समझना
1: अधिवक्ता भी हमें
0: चाहिए
1: कहीं ऐसा तो नहीं है
0: नहीं
1: गलत
0: कि
1: सलाह की
0: हाँ,
1: तरफ ले जा रहे हो।
0: और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी मीडिएशन में भी हम
1: हाँ
0: रेगुलर जो विधिक सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है यहाँ
1: जी
0: पर, एक इसके साथ एक और सुविधा मैं यहाँ आज बताना चाहूँगी इस
1: जी
0: आपके माध्यम से, कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम और आयोजित किया जा रहा है कि 3.0, जिसके मध्यस्थता अभियान 3.0, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पर समझौते के आधार पर मामले निस्तारित कर रहे हैं, जिसमें आप डेली आप जिस न्यायालय में आपका मामला लंबित है उस न्यायालय में जाके आप प्रार्थना पत्र देंगे, वो मामला विधिक सेवा प्राधिकरण में आएगा और हमारे यहाँ अधिवक्ता जो मीडिएटर हैं वो भी अधिवक्ता हैं, वो भी समझौते के आधार पर मामले निस्तारित कराते हैं। और कई हमारे यहाँ करीब 14 अधिवक्ता से अधिक अधिवक्ता हैं
1: जी
0: जो
1: जी
0: इस मामले मतलब रेगुलर बेसिस पर हम बैठते हैं, मतलब उनकी बेंच बैठती है, 4 अधिवक्ता हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पर हैं, हर हर रोज़ बैठते हैं और वो इसको समझौते के आधार पर मामले निस्तारित करा रहे हैं। तो बस मैं शायद लोगों तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पा रही है, या कहीं
1: मतलब ये
0: कहीं बीच में
1: सिर्फ
0: गैप है
1: 3 महीने
0: जिसके,
1: की बात नहीं,
0: हाँ
1: रोजाना भी इसका लाभ ले
0: रोजाना
1: सकते
0: भी इसका हो रहा है लाभ, कि मतलब
1: हैं।
0: आपको ये भी नहीं, अब तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ये जो व्यवस्था चल रही है इसका आप लाभ रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हम सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से कर भी रहे हैं। फिर भी मतलब
1: मतलब जागरूकता आएगी और
0: और
1: हम
0: एक
1: समझते हैं
0: समस्या
1: कि
0: शायद मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों मामले को खींचने की बजाय प्रोत्साहन के लिए हम कहेंगे कि मामले को खींचने की बजाय और अपना समय और न्यायालय मतलब समय बर्बाद करने और अपना पैसा बर्बाद करने की जगह

0: अगर मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर मामला निस्तारित करते हैं तो एक बहुत अच्छी पहल है जो समाज को एक अच्छे उस पर ला सके,
1: हाँ,
0: खड़क
1: कम
0: पायदान
1: से
0: पे ला
1: कम
0: के खड़े कर
1: समाज में हम
0: सके।
1: रह रहे हैं तो समरसता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के पक्ष को भी समझें। कई बार लेने की बजाय देने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो न्याय की उसमें अवधारणा में भी यही है कि अगर दे के शांति हो जाती है तो उसको हम जो है ले लेना हमारे लिए बेहतर है। इसमें आपने जो डे टू डे की प्रतिदिन की बताई, तो ये कहाँ आपका विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यालय वहाँ पर ये
0: वहीं
1: आती है?
0: वहीं पर आयोजित हो
1: जी
0: रही है ये, मतलब आप, लेकिन इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में देना
1: न्यायालय में
0: है।
1: देना है कि
0: आप
1: मैं
0: संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दीजिए कि हम अपने मामले को समझौते के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा कराना चाहते हैं, तो आपकी पत्रावली
1: जी
0: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेज दी जाएगी और वहां पर हमारे अधिवक्ता द्वारा समझौते के आधार पर दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है। उसके बाद समझाया जाता है कि मतलब समझौते के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और दोनों पक्ष जब समझौता करना चाहते हैं तो वहां पर हम कई मामले हमारे यहाँ निस्तारित हो भी रहे हैं।
1: जी। तो श्रोता बंधुओं, ये बात हम कर रहे थे राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर शनिवार को लग रही है, एक त्वरित, सस्ता, सुलभ और ऐसा न्याय जो एक नागरिक का नैतिक अधिकार भी है। अगर आप भी किसी कारण से न्यायालय में आपका कोई केस लंबित है और सहमति बना पाते हैं तो आप जरूर फायदा उठाएं। 12 सितंबर को नहीं है तो जैसा अनीता जी ने बताया कि प्रतिदिन भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अब ये सुविधा मिल रही है, तो हम एक सहमति का वातावरण अगर समाज में बनाते हैं, परिवार में बनाते हैं, कोई भी बात हो अगर हम उसको निपटा लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी शांति लेकर के आ सकते हैं। कुछ और चलते चलते कहना चाहेंगे मैडम?
0: जी धन्यवाद। बाकी मैं नागरिकों से, समस्त मस्तरावासियों से अपील करती हूँ
1: जी
0: कि अधिक से अधिक संख्या में उस दिन उपस्थित हों और अपने इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद सर।
2: आपसे मिलिए क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, राष्ट्रीय लोक अदालत उद्देश्य एवं लाभ। अनीता सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए। स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार यानी कि 14 सितंबर 2026 को दोपहर 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय रहेगा बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉ. निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याओं और समाधान के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए श्रावस्ती और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमार रिजवी का।
3: श्रावस्ती में राप्ती नदी ने एक बार फिर रौद रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सिसवारा घाट के पास नदी की तेज कटान का अप्रोच रोड से बेहद करीब पहुंच गई है। हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे श्रावस्ती भाजपा विधायक पंडित रामफेरन पांडे ने पूरे हालात का जायजा लिया। शासन स्तर पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव से फोन पर बातचीत कर तत्काल कार्रवाई की मांग की। विधायक के मुताबिक जल्द ही शासन स्तर से धनराशि आवंटित कर तटबंध निर्माण का काम कराया जाएगा।
4: इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमने ऊपर भी बात किया है और जब तक ये गाइड बंद नहीं बनेगा तटबंध, तब तक ये नदी की कटान आप रोक नहीं पाएंगे। ये हमारा पुल भी निष्प्रयोग हो जाएगा।

0: इसके लिए हमने शासन में बात भी किया है, इसका एस्टीमेट बनके तैयार है और ये आने वाले दिनों में कटान से बचाया जा सकेगा।
1: श्रावस्ती जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए विकासखंड बिलौला के अंतर्गत सिसवारा घाट स्थित पुल के अप्रोच रोड का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी दशा में मार्ग को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कारगर कदम उठाए। उन्होंने वहां पर उपस्थित सेतु निगम के अभियंता को निर्देशित किया कि अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड को आवश्यक समन्वय स्थापित कर ट्रेसिंग कराए और किनारों पर हो रहे कटान को रोकने के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति पूर्ण करा ली जाए। जियो शीट और बंबू क्रैट का प्रयोग किया जाए जिससे सड़क को संभावित बाढ़ के दौरान कटने से बचाया जा सके। श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग ने जनपद के किसानों को रबी फसलों जैसे तुरई, सरसों, अरसी, चना, मटर, मसूर और गेहूं के बीजों की बुकिंग की सुविधा दी है। उन्होंने बताया कि रबी फसलों के बीज का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। किसान भाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने पुलिस लाइन सभागार पहुंचकर महिला उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान सदस्य को कुल 10 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ मामले न्यायालय से संबंधित प्रकरण थे। शेष अन्य शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सदस्य ने महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं व शिकायतों से रूबरू होते हुए कहा कि समस्याओं से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को त्वरित न्याय देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के प्रत्येक महिला को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसके लिए महिला आयोग सदैव प्रयासरत है। श्रावस्ती के मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लखनऊ द्वारा भारत कौशल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जाना है। इसमें 63 कौशलों के मानदंड के अनुसार भारत सरकार के स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल के माध्यम से 16 से 23 आयु वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा पंजीकरण का प्रतिभाग कराया जाना है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद स्तर पर भारत कौशल प्रतियोगिता 2026 का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अपने संस्थान विभाग के विद्यार्थियों लाभार्थियों का पंजीकरण कराते हुए प्रतिदिन सूचना गूगल शीट पर अंकित कराना सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत परिषदीय एवं एडेड विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए बड़ी पहल की है। उनके तहत रसोइयों को स्वस्थ सुरक्षा और मानदेय की दृष्टि का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में इस आयोजन का शुभारंभ किया। उक्त कार्यक्रम को सजीव प्रसारण जनपद की तहसील लिकौना सभागार में दिखाया गया जिसमें विधायक राम फेरन पांडे, जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग बड़ी संख्या में रसोइये और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्रावस्ती रामफेरन पांडे एवं जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किया। इस अवसर पर विधायक ने सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कैशलेस चिकित्सा कार्ड मिलने से रसोइयों और उनके परिवार को बीमारी से समय से इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्ड मिलने पर उपस्थित रसोइयों ने खुशी का इजहार किया।
2: श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार का।
3: जनपद हमीरपुर में रक्षाबंधन पर्व और महिला समानता दिवस पर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को परिवहन विभाग की बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई। रक्षाबंधन पर महिलाओं ने राज्य सड़क परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की। इस सुविधा के लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया। इस पर्व के लिए हमीरपुर और राज डिपो की 221 बसों को लगाया गया जिन्होंने महिला यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाया। हमीरपुर के डिपो प्रबंधक आरपी साहू ने बताया कि 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात तक महिलाओं के साथ एक सहयात्री को भी निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बसों ने क्षमता से अधिक सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। साथ ही बस चालकों, परिचालकों, कारशाला कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत 1800 किलोमीटर बस का संचालन करने पर 12,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। जनपद हमीरपुर में आउटसोर्स कर्मियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार

0: आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा, पारदर्शी व्यवस्था, समय से मानदेय भुगतान और कार्य स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई, जिसका कर्मचारियों ने स्वागत किया। जनपद हमीरपुर में 11 सितंबर को हरिशंकरी विशेष पौधरोपण अभियान चलाया गया। प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि इसके लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं,
1: जिसमें पूरे जनपद में ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक मजरों में एक एक हरिशंकरी रोपित किए जाएंगे। इसके साथ साथ गौशालाओं में भी जो जिले स्तर पर चयनित किए जा रहे हैं, उनमें भी जो है हरिशंकरी पौध रोपित किए जाएंगे, जिससे कि जनपद में हरियाली के साथ साथ गौ आश्रय स्थलों पर भी पशुओं के लिए एक छाया की व्यवस्था हो जाए।
0: जनपद हमीरपुर के लोदीपुर निवादा गांव में रक्षाबंधन के दूसरे दिन अनोखी कुश्ती का आयोजन किया जाता है। यहां ग्रामीण महिलाएं घूंघट की ओट में कुश्ती लड़ती और बहु बेटियां ही दर्शक होती हैं। इस दौरान पुरुषों को प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध रहता है। आयोजन के समय पुरुष घर में रहते हैं या फिर गाँव से बाहर चले जाते हैं। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में गाँव की हर उम्र की महिलाओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान गिरजा देवी ने विजेता महिलाओं को पुरस्कृत। इस बारे में स्थानीय निवासी नाथूराम ने बताया कि यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जब अंग्रेजों के अत्याचार से गांव के पुरुष अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चले जाते थे, तो अंग्रेजों से उनका सामना करने और अपनी आत्मरक्षा के लिए उस समय की महिलाओं ने अपनी रक्षा के सारे दांव पेंच सीख लिए थे। उनकी आत्मनिर्भरता और अनूठी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। तभी से आसपास की ग्रामीण महिलाएं दंगल कुश्ती की प्रथा को कायम किए हैं। जनपद हमीरपुर में वर्षा जनित संचारी रोगों की रोकथाम और उनके नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यापक कदम उठा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी डेंगू की रोकथाम में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी।
2: समय संचारी रोग एवं वेक्टर जनित रोगों का संक्रमण चल रहा है, उन्हीं संक्रमण रोगों में डेंगू रोग आजकल प्रसारण की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी PSC CSC पे जाँच की सुविधाएं हैं और 5 वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है स्वच्छ देश स्वच्छ समाज। वाचन कर रही हैं मोनिका विजय।

महात्मा गांधी का यह सपना था कि सब भारतवासी स्वच्छता के बारे में सीखें और अमल करें। वे पर्यावरण को साफ रखने में काफी ध्यान देते थे। अगर सब नागरिक, चाहे छोटे हों या बड़े, अपने घर को और आसपास की जगहों को साफ रखें, तो बीमारियां फैलना बंद हो जाएंगी। सफाई के मामले में हम हिंदुस्तानी विदेशों से बहुत पीछे हैं। स्वच्छ भारत से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई दोनों ही बढ़ेंगे और गरीबों के पैसे भी बचेंगे। इससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। स्वच्छ भारत में लोग ना गंदगी करेंगे और ना ही करने देंगे। विद्यालयों में विद्यार्थियों को सब कुछ साफ रखने की आदत पड़ जाती है, तब वे बिना बताए ही अपनी जगह के साथ साथ आसपास की जगहों को भी साफ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी ले लेंगे। जहां पर सरकार या नगर पालिका अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाती है, वहां कुछ स्वैच्छिक संस्थानों को सफाई के काम सौंपना चाहिए। हमें गांवों में और ज्यादा शौचालय बनाने होंगे। भारत की स्वच्छता की यह कोशिश मानव श्रृंखला बनकर और बढ़ेगी। अखबार, टीवी और रेडियो पर प्रसारण और चर्चाओं से लोगों को जानकारी बढ़ेगी। कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान पश्चिमी देशों जैसा एकदम बढ़िया और सुंदर हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, अर्थात सफाई में भलाई। स्वच्छ घर से स्वच्छ समाज और स्वच्छ समाज से स्वच्छ भारत बनाना है। इस अभियान के तहत करीब 31 लाख केंद्रीय कर्मचारी और विभिन्न राज्य के कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150

दसवीं जयंती पर देश को पूरा साफ सुथरा बनाना लक्ष्य है। कैसे होगा ये सपना पूरा? सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए आम लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 2019 तक 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। 4041 शहरों में सोशल वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत होगी। इसके अतिरिक्त ऑफिसर्स और आम लोगों से हर सप्ताह 2 घंटे सफाई को देने और 100 लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की अपील। सरकारी ऑफिस में सफाई के मानक तय किए जाएंगे। जन प्रतिनिधियों की भूमिका तय की जाएगी। बेहतर काम करने पर गांवों को पुरस्कार दिया जाएगा। यकीन मानिए, बापू जिंदा होते तो देश में गंदगी का साम्राज्य देख करुणा मुख से यही निकला होता। प्रार्थना सभाओं में भी सफाई का महत्व बताने वाले इस महात्मा की आत्मा भी हम भारतीयों की गंदगी से सरोबार देखकर रो देती होंगी। किसी को भी सड़क पर थूकना या कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ऐसे ही तो बीमारियां फैलती है। सड़क पर कूड़ेदान की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए ताकि लोग कचरा इधर उधर ना फेंके। घर में उतना ही सामान रखिए जितना की जरूरी है। कहीं भी पानी जमा होगा तो मच्छर तो पैदा होंगे और ये हमें वे हमारे आसपास के वातावरण को दूषित करने के साथ साथ बीमारियां भी फैलाएंगे। अतः अंत में यही कहना चाहूंगी, जो भी कहा गया है उन सब से ये स्पष्ट है कि हमें समाज को अपना परिवार समझकर इसे साफ रखने में योगदान देना होगा, जिससे हम अपने देश को स्वच्छ, साफ और सुंदर बना सकें।

आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता स्वच्छ देश स्वच्छ समाज। वाचन कर रही थी मोनिका विजय। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रहे हैं जितेंद्र सिंह।

ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, दिन की शुरुआत अगर अच्छी अच्छी बातों के साथ की जाए, सकारात्मक बातों के साथ की जाए, तो वास्तव में जीवन को एक सुंदर और अच्छे ढंग से जीने की प्रेरणा भी मिलती है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की, एक ऐसी छोटी सी बात की, कह सकते हैं कि जिससे हमको हर दिन जिंदगी को एक नए ढंग से, एक नई उम्मीद के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है। वो बात एक छोटे से वाक्य में छिपी है, जहां चाह वहीं राह। कह सकते हैं कि जहां उम्मीद है वहीं राहें आगे हमें दिखाई देती हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ सपने होते हैं, कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर

जीवन बनाना चाहता है तो कोई अपने अंदर भीतर छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना चाहता है। कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में या कहें तो सबसे टॉप पर लाना चाहता है, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सपना देखना आसान है, उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना ये थोड़ा कठिन है। कई बार परिस्थितियां हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं, साधन कम होते हैं, समय कम होता है, लोग हतोत्साहित करते हैं और कभी कभी हम खुद भी सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। यहीं से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। अगर हमारे मन में सच्ची चाह है तो लक्ष्य के प्रति विश्वास है और कदम बढ़ाते रहने का हमारे अंदर साहस है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी हमारे लिए आसान होने लगता है, क्योंकि राह हमेशा पहले से बनी हुई नहीं मिलती। कई बार अपनी मेहनत, धैर्य और हौसले से हमें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। याद रखिए कि चाह केवल इच्छा नहीं है, वो चाह हमारा संकल्प है जो हमें बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आपके सामने आए तो उसे देखकर रुकिए मत, खुद से कहिए मंजिल भले ही दूर है, रास्ते भले ही कठिन है, लेकिन मेरी चाह सच्ची है और जहाँ चाह है वहाँ ही हमारी राह है। तो श्रोताओं, हम यही कहेंगे कि सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम कोशिश करना नहीं छोड़ते, और जहाँ चाह होती है वहीं हमारे जीवन की राह भी होती है।

0: श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। ये अभियान पूर्व में भी काफी समय से चलाया जा रहा है, लेकिन दिनांक 3 सितंबर से एचपीवी टीकाकरण मेगा अभियान की शुरुआत की गई है। आज हमें इस विशेष टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मथुरा डॉक्टर रोहिताज सिंह तेवतिया जी।
1: सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 3 अगस्त से 17 सितंबर 2026 के मध्य 14 वर्षीय पात्र बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि शासन स्तर से दिशा निर्देश भी हमें प्राप्त हुए हैं। अभी इसी सप्ताह कल मंगलवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें और चर्चा हुई थी और साथ में शासन से निर्देश भी आया, जिसमें कि बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने और बालिकाओं के सुरक्षित कल को सुनिश्चित करने हेतु हम लोग एचपीवी का टीकाकरण का महाअभियान जो 3 अगस्त से लगातार चला रहे हैं, उसका द्वितीय चरण कहें एक तरह से, वो 3 सितंबर से 17 सितंबर तक किया जाना है।
2: एचपीवी टीकाकरण के बारे में जो आपने बताया कि ये 14 वर्षीय बालिकाओं के किया जा रहा है, तो ये टीकाकरण क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, जो एचपीवी वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि ये टीकाकरण का क्यों आवश्यक है, मैं बताना चाहूंगा। एचपीवी टीकाकरण कैंसर से बचाव के लिए है, जो कि सर्वाइकल कैंसर, जिसे गर्भाशय की ग्रीवा का जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें कैंसर की जो शिकायत हो जाती है, वो दरअसल उसके लिए 99% केसेस में देखा गया है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HP वायरस ये जिम्मेदार रहता है। जब हम इससे बचाव के लिए HPV का टीका लगा लेते हैं तो इस वायरस से इन्फेक्शन की संभावना खत्म हो जाती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है महिलाओं में, जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, उससे बचाव मिलता है। आज जो हमारी बच्चियां 14 वर्ष की हो गई हैं, जिन्होंने 14वां बर्थडे मना लिया है परंतु 15वां जन्मदिन उनका मनाना शेष है, ऐसी बच्चियों को चिन्हित कर हम लोग HPV का टीका लगा रहे हैं, जिसमें गार्डासिल 4 वैक्सीन दी जा रही है। इस वैक्सीनेशन के परिणाम स्वरूप यह होगा, ये बच्चियां जब कल भविष्य में व्यस्त होंगी, शादी ब्याह होगा और अपना जीवन यापन करेंगी, तो सर्वाइकल कैंसर से इनको ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा, सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसके साथ एक और समस्या रहती है कि जब इसकी मालूमात होती है चेकअप में, तो शुरू में भी पता चल सकता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में किसी न किसी वजह से नजरअंदाज हो जाती हैं चीज़ें, और लक्षण भी कुछ इस तरह से रहते हैं कि जिससे कि उनको, महिलाओं को अंदाजा नहीं हो पाता है कि इस तरह की भी कोई शिकायत बीमारी बन सकती है। जब वो चेकअप कराती है और इस बीमारी की उनको जानकारी पता चलती है तो बड़ी लेट स्थिति में पता चलती है, और फिर ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम अपनी बेटियों को जब यह टीका लगा लेंगे तो उनके सुरक्षित कल को सुनिश्चित कर लेंगे।
2: तो क्या ये वैक्सीन केवल वन टाइम ही लगानी होगी या बार बार लगाने की आवश्यकता होती है?
1: इसमें देखिए, जो राज्य स्तर से और भारत सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उसमें ये एक ही डोज दी जाएगी। हमारी वो बच्चियां जो 14 वर्ष का जन्मदिन मना चुकी हैं, 15 वर्ष का जन्मदिन मनाने के लिए शेष हैं, उनको एक डोज दी जाएगी, बाईं बाजू में मांसपेशी में IM इंट्रामस्कुलर टीका लगाया जाएगा, 0.5 ml की खुराक दी जाएगी। सिंगल डोज वैक्सीन है, बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है और एक डोज ही पर्याप्त है उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए।
2: जैसा कि ये मेगा अभियान है, तो इस अभियान में किस स्तर पर ये वैक्सीन लगाई जाएंगी और क्या इसके लिए आपने कार्यक्रम बनाया हुआ है?
1: देखिए, आपने ये पूछा कि हमारी क्या रूपरेखा रहेगी इस विषय में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। हम यहाँ व्यवस्था यह कर रहे हैं, जनपद मथुरा में जितने भी हमारे छाया VHND सत्र हैं, जो कि बुधवार शनिवार को ग्रामीण अंचलों में शहरी क्षेत्रों में होते हैं और समाज के बीच में

0: बैठ के हमारी वैक्सीनेटर ANM दीदी और हमारी मोबिलाइजर जो घर घर से बच्चों को प्रेरित करके टीकाकरण सत्र तक लाती हैं आशा दीदी, इनकी सहभागिता रहेगी। तो जो हमारे बुधवार शनिवार या अन्य दिवस में छाया VHND सत्र हैं वहाँ पर हम लाभार्थियों की सूची बनाकर टीकाकरण सत्र तक उनको बुला करके वहाँ टीका लगा रहे हैं। एक तो रूपरेखा में हमारा ये योजना है। दूसरा, जो दिवस हमारे पास उपलब्ध हैं जिसमें हम छाया VHND सत्र में नहीं भेज रहे हैं अपने वैक्सीनेटर को, तो हम सभी विद्यालयों से सामंजस्य करके यह प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, गुरुकुल हो, मदरसे हो, किसी भी प्रकार के स्कूल जिनमें 14 से 15 वर्ष की बच्चियां अध्ययनरत हैं, उनको उनके स्कूल में ही जाकर ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा, साथ में आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा भी दिशा निर्देश हमको दिए गए हैं। और यह हमको कहा गया है कि हम प्रत्येक दशा में 17 सितंबर से पहले हमारे जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि हासिल करें। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी अभिभावकों, माता पिताओं, सिविल सोसाइटी और जो हमारी प्यारी बेटियां हैं, बालिकाएं हैं, उनसे ये विशेष अनुरोध है कि कृपया इस अभियान में आप जुड़ें और प्रत्येक उस 14 से 15 वर्ष की बच्ची को एक खुराक लगवाना सुनिश्चित करें जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
1: तो क्या ये जिला अस्पताल पर प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं?
0: जैसे कि मैंने बताया आपको कि जिला अस्पताल पर CSC पर तो उपलब्ध है, क्योंकि बच्चे स्कूल में भी जाते हैं और फिर उनको इतना दूर आने में थोड़ा समस्या रहती है, तो यह व्यवस्था की गई है कि उन्हीं के ही घर के आसपास छाया VHND सत्र लग रहा है, जिसको RI सत्र कहते हैं, वो वहाँ टीका लगवा सकती हैं, अथवा उनके स्कूल में हम विशेष दल भेज रहे हैं। हम यहाँ पर DIO साहब का, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम का भी सहयोग ले रहे हैं। साथ में सभी विद्यालयों से हमारे जो मेडिकल अफसर इंचार्जेज हैं, नोडल अर्बन हैं और उनके अंडर में जो चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारी ANM हैं, आशाएं हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं और हम ये टीकाकरण अभियान स्कूलों में और छाया VHND सत्रों पर लगा रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक 14 से 15 वर्ष की पात्र बच्ची को टीका कर HPV का टीका लगाया जा सके।
1: आधार कार्ड लाना भी आवश्यक है बच्चियों के लिए?
0: हाँ जी, जैसे मैं बताना चाहूंगा, इसमें आधार कार्ड एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, लेकिन किसी के पास अगर आधार कार्ड का समस्या है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आधार कार्ड के बगैर टीका नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उनके पास में पहचान का चित्र है, जैसे हमने कोविड में कोविन ऐप के माध्यम से किया था, इसमें यूविन ऐप के माध्यम से वो अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता प्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी कर रहे हैं और इसी क्रम में जब टीका लगने के पश्चात हम यूविन पर उनके टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करते हैं और जब टीकाकरण की स्थिति अपडेट हो जाती है तो उसमें वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि उनको पता चलेगा कि उनको यह टीका लगाया गया है।
1: तो श्रोताओं, ये HPV टीकाकरण का मेगा अभियान काफी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से जो हमारी बालिकाएं हैं उनको भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। और ये सर्वाइकल कैंसर अधिकांशतः भारत में महिलाओं में पाया जाता है और उद्देश्य यही है कि जो हमारी बेटियां हैं उनका भविष्य सुरक्षित रह सके, वो आगे स्वस्थ रहें और इस तरह की गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो। तो इस अभियान में सहभागिता कर अपनी बच्चियों को, जिनकी आयु 14 वर्ष की है और अभी 15 वर्ष उन्होंने पूर्ण नहीं किए हैं, HPV टीके से अवश्य आच्छादित करें ताकि भविष्य में उनको इस तरह की समस्या ना हो। डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, विशेष रूप से बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, साथ में सभी श्रोतागणों का, ब्रजवासियों का भी धन्यवाद। राधे राधे।

0: श्रोताओं, स्वस्थ और सुपोषित बचपन किसी भी देश या समाज की नींव है। यदि बच्चे कुपोषित होते हैं तो इसका सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए समय समय पर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसी क्रम में कुपोषण को दूर करने के लिए संभव अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा श्री योगेंद्र कुमार सिंह। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: धन्यवाद।
0: आज हम संभव अभियान को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि संभव अभियान का मतलब है कि कुपोषण को खत्म करना असंभव नहीं, संभव है। कुपोषण को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है और उस पहल का ये छठवां अभियान है जो प्रत्येक माह जुलाई से सितंबर तक किया जाता है। और इसमें सितंबर माह में पोषण माह की थीम भी रहती है, जिसमें पोषण माह में विशेष अभियान चलाकर हम विभागीय सेवाओं को देखते हैं। तो संभव अभियान से हम जो भी कुपोषित बच्चे हमारे, चाहे वो हमारी किशोरियां हैं, माताएं हैं, लो बर्थ बेबी हैं या 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो उन्हें हम विशेष अभियान चलाकर उनके कुपोषण को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग का समन्वय रहता है। इन तीनों के माध्यम से ही हम संभव अभियान के माध्यम से कुपोषण को दूर करने का प्रयास करते हैं।
0: जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी किस आधार पर पहचान की जाती है?
1: कुपोषित बच्चों की पहचान उनका हम वजन और लंबाई लेकर, जो हमारा इंडिकेटर है, उसके आधार पर करते हैं। जो भी बच्चे 3SD की श्रेणी में आते हैं वो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, और जिनमें जो चिकित्सीय जटिलताओं से युक्त बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम NRC में संदर्भन करते हैं। अन्य बच्चे जो चिकित्सीय समस्याओं से ग्रस्त नहीं हैं उनका परिवार में ही रहकर प्रबंधन किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य विभाग से 6 प्रकार की दवाएं दी जाती हैं तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से उनके यहाँ प्रति सप्ताह गृह भ्रमण कराते हुए एवं उन्हें पोषण परामर्श देते हुए उनका नियमित वजन एवं वृद्धि की निगरानी की जाती है और उन्हें विभाग द्वारा पोषाहार प्रदान किया जाता है तथा पोषण परामर्श भी किया जाता है, जिसके माध्यम से हम उनका कुपोषण दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मथुरा में इसके लिए NGO भी काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा बच्चों

0: को मूंगफली का दलिया दिया जाता है, जो हमारे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर आते हैं उन्हें अच्छे पात्र के माध्यम से मिड डे मील का खाना भी दिया जा रहा है।
1: जैसा कि आपने अभी दो कुपोषित श्रेणियों का जिक्र किया, सैम और मैम, इस तरह के बच्चों के लिए किस प्रकार की विशेष व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है?
0: इसमें जो हमारे सैम श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए विभाग से अतिरिक्त पोषाहार की मात्रा दी जाती है, उनके लिए सामान्य बच्चों की अपेक्षा डबल पोषाहार दिया जाता है। साथ ही उनके यहाँ प्रति सप्ताह गृह भ्रमण किया जाता है, पोषण परामर्श दिया जाता है। जो गंभीर कुपोषण से ग्रसित हैं उन्हें हम NRC में भर्ती कराते हैं और हमारे यहाँ लगातार 5-6 महीने से 100% से ज़्यादा बेड वैकेंसी NRC की रही है, इसके लिए हम अब भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही रहता है कि हमेशा हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल सकें।
1: कुपोषित बच्चों के लिए किस प्रकार के विशेष पुष्टाहार वितरित किए जाते हैं?
0: इस समय जो विभाग के द्वारा 9 प्रकार का पुष्टाहार निर्धारित किया गया है, जिसमें उनके लिए नमकीन प्रीमिक्स लड्डू, प्रीमिक्स दलिया रहता है और उसकी डबल मात्रा दी जाती है उनको। साथ ही उनको परामर्श भी दिया जाता है कि वह घर में पौष्टिक भोजन खिलाएं, निर्धारित मात्रा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा उन्हें बताई जाती है कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना, 2 बार उनको जो है नाश्ता, और जो बाहरी जंक फूड हैं उनको न दिया जाए। इसके लिए सितंबर माह में पोषण माह के तहत विशेष अभियान भी चलाते हैं और उसी प्रकार हमारे द्वारा अप्रैल माह में भी पोषण पखवाड़े के तहत इसके लिए अभियान चलाकर जन जन को जागरूक किया गया था।
1: और इसमें गर्भवती और धात्री महिलाएं रहती हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था पोषण के लिए रहती है?
0: गर्भवती महिलाएं, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो हम उसकी प्रथम तिमाही के बाद उसका वजन कराते हैं और पहला स्वास्थ्य चेकअप कराते हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और ASIM द्वारा नियमित निगरानी की जाती है और देखा जाता है कि हर 3 महीने बाद उसके वजन में पर्याप्त वृद्धि हुई या नहीं हुई है। उसके लिए उन्हें पोषण परामर्श, आयरन टेबलेट, फॉलिक एसिड की टेबलेट एवं कैल्शियम की गोलियां प्रदान की जा रही हैं। साथ ही उनको पोषण परामर्श भी दिया जा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा। विभिन्न वीडियो आदि के माध्यम से उनको समझाया जाता है कि आपको किस तरह का संतुलित डाइट लेनी है और अतिरिक्त एक खुराक अतिरिक्त लेनी रहती है, ज़्यादा काम नहीं करना होता है और 1-2 घंटे का आराम भी उन्हें दिया जाना है। यह सब उनके परिवार वालों को समझाया जाता है। विभाग से भी उनके लिए अतिरिक्त कैलोरी पूर्ति के लिए पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि कोई माँ ही अगर स्वस्थ नहीं होगी तो उसके अंदर पड़ने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। इसलिए हम गर्भवती महिलाओं पर विशेष फोकस करते हैं जिससे उनके बच्चे स्वस्थ पैदा हों। इसके लिए उनके परिवार वालों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा कई प्रकार की सामुदायिक गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी करते हैं, पोषण परामर्श भी देते हैं। इसके लिए जो है BHND सत्र पर उनका वजन नियमित किया जाता है, उनकी हाइट ली जाती है। इस तरह हम जो है गर्भवती महिलाओं को पोषण परामर्श देकर उनके अंदर पड़ने वाले बच्चे को कुपोषण की श्रेणी से निकालने का प्रयास करते हैं।
1: इस अभियान में क्या किशोरियों को भी शामिल किया जाता है?
0: इस अभियान में किशोरियों को हम आयरन फॉलिक टैबलेट वितरण करने पर विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि प्रदेश और देश में एनीमिया की बहुत गंभीर समस्या है और हमारी लगभग 50% महिलाएं एवं किशोरियां एनीमिया से ग्रसित हैं। इसके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से और सप्ताह में प्रतिदिन उन्हें 1 दिन आयरन टैबलेट लेने के लिए वितरित की गई है, जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को रजिस्टर भी दिए गए हैं और उनमें अंकन कर रही है। नियमित इसका वितरण कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें पोषण परामर्श भी दिया जाता है कि किस प्रकार वह भोजन करके कुपोषण की श्रेणी से मुक्त हो सकें, क्योंकि आज की किशोरी ही कल की माँ है। तो संभव अभियान के तहत हम किशोरियों पर भी फोकस करते हैं।
1: कहने का तात्पर्य यह है कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा भोजन हमारे लिए पोषण युक्त है और हमारे शरीर के लिए ताकतवर है और अच्छा है।
0: जी जी, लोग जंक फूड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि हरी साग सब्जियाँ, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, ये हमें संतुलित डाइट के रूप में लेना चाहिए और हम उसके लिए परामर्श देते

ते हैं कि अपनी भोजन में चार प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जिसमें अन्न है, हरी सब्जी है, पीले फल हैं तथा दूध या दूध से बने पदार्थ, उसको अपने खाद्य में यूज करें, जिससे उन्हें संतुलित भोजन प्राप्त हो सके, कुपोषण से दूर रहकर स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। आप सभी श्रोताओं से कहेंगे कि सभी अपने बच्चों को संतुलित

0: बच्चों को संतुलित डाइट दें, साथ ही अपने परिवार में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर ध्यान दें तथा परिवार के सभी सदस्य उस माँ बनने वाली गर्भवती का सहयोग करें, जिससे उनके परिवार में स्वस्थ संतान पैदा हो तथा आगे भी वह जो है देश के लिए एक सुशिक्षित नागरिक बन सके। धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तो आज की खास खबरों में है कि लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए आज शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश विकास कुमार की अध्यक्षता में होने वाली लोक अदालत में विभिन्न मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। और इसी के साथ एक और खबर है, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में दिनांक 17 से 20 सितंबर तक उन्नाव में प्रदेशीय समन्वय जूनियर बालक बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें आगरा मंडल की टीम की भी प्रतिभाग करेगी। इसके लिए मथुरा के खिलाड़ियों का जिला स्तरीय ट्रायल 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि 12 सितंबर इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगान हमलावरों का डटकर मुकाबला किया था। और आज ही के दिन सन 1959 में सोवियत संघ ने अपना अंतरिक्ष यान लूना 2 लॉन्च किया, जो चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनी थी। और आज ही के दिन सन 1992 में डॉक्टर माई सी जैमिसन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। और इसी के साथ साथियों, हम आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम अपने घरों की साफ सफाई रखते हैं, उसी प्रकार से हम सार्वजनिक स्वच्छता का भी ध्यान रखें, क्योंकि सार्वजनिक स्वच्छता का सीधा संबंध जन स्वास्थ्य से है। गंदी जगहें बीमारियों को आमंत्रण देती हैं, जबकि स्वच्छता एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली का आधार है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुले में कूड़ा कचरा और गंदगी से हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं और साफ सफाई से इन बीमारियों को रोका जा सकता है। और दूसरा, स्वच्छ वातावरण न केवल हमें स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जरूरी है। और जहां साफ सफाई रहती है, स्वच्छता रहती है, तो वहां हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है तो उस साफ वातावरण को देखकर हमेशा हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और सकारात्मक रहता है। इसके अलावा एक स्वच्छ शहर या देश पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। बस यही कहना चाहेंगे, जहाँ जो कहीं आपके जो सार्वजनिक स्थल हैं, गली मोहल्ले हैं, अक्सर लोग बिना हिचके हुए तुरंत कूड़े कचरे को अपने दरवाजे पर, गली मोहल्लों में इधर उधर फेंक देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि कूड़े को डस्टबिन में ही डालें और एक निर्धारित स्थान पर ही उसका निस्तारण करें, गंदगी नहीं फैलाएं। और जहां हमारे पेयजल की व्यवस्था भी होती है, अक्सर लोग देखते हैं कि उसमें लोग गुटखा, तम्बाकू आदि ये सब थूक देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उस स्थान को भी हमको स्वच्छ रखना है, क्योंकि वो सभी के उपयोग के लिए है, सभी लोग उसमें जल पीते हैं, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रहे थे जितेंद्र सिंह, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय

दत्तात्रेय वीणा वादन, तबले पर संगत गुलाम साबिर की थी। आइए अब सुनते हैं डीएल काबरा का राग नट भैरव और सिंध भैरवी में निबद्ध सरोद वादन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डीएल काबरा का राग नट भैरव और सिंध भैरवी में निबद्ध सरोद वादन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ पहुंचा है शनिवार और कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर मैं आपकी दोस्त दीपिका हूं आपके साथ। दोस्तों, ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम करते हैं किसी एक फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें और मैं आपको सुनवाती हूं उससे जुड़े हुए गीत। आज की हमारी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसके गाने बेहद फेमस हैं और बहुत वर्षों के बाद आज भी उन गानों को सुनकर एक नई ताजगी महसूस होती है। ज़्यादा चीज़ों को ना घुमाते हुए सीधे सीधे बताती हूँ, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म दीवाना की, जो कि रिलीज हुई थी 26 जून वर्ष 1992 को। जी हाँ दोस्तों, दीवाना फिल्म का नाम सुनते ही आप सबके दिल और दिमाग में इस फिल्म के गाने ज़रूर आ गए होंगे। तो क्यों ना शुरुआत करें फिल्म के इस गीत से।

तो दोस्तों आज की फिल्म है दीवाना। वर्ष 1992 को 26 जून के दिन रिलीज हुई थी ये फिल्म। फिल्म का निर्देशन किया था राजकंवर ने, जो कि एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। और ये फिल्म आज के सुपरस्टार शाहरुख खान की भी पहली डेब्यू फिल्म थी। हालांकि शाहरुख ने जिस फिल्म को पहले साइन किया था वो थी फिल्म दिल आशना है, लेकिन वो फिल्म इस फिल्म के 6 महीने बाद रिलीज हुई। इस तरह से दीवाना उनकी पहली डेब्यू और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। फिल्म के अभिनेता जो थे उसमें मुख्य भूमिका में रहे ऋषि कपूर, दिव्या भारती, शाहरुख खान, अमरीश पुरी। फिल्म की कहानी लिखी थी सागर सरहदी और रणबीर पुष्प ने। गुड्डू दनुआ, ललित कपूर और राजू कोठारी ने फिल्म का निर्देशन और निर्माता दोनों पक्ष संभाले थे। छायांकन हरमीत सिंह का था। संगीत, जो कि इस फिल्म की यूएसपी थी, उसकी कमान संभाली नदीम और श्रवण ने। फिल्म के गीत लिखे थे अनजान ने, समीर ने। दोस्तों फिल्म के गीत लिखे थे समीर ने। और सभी गीतों में जो आवाजें हमने सुनी वो आवाज थी कुमार सानू, साधना सरगम, अलका याग्निक, विनोद राठौड़ की। फिल्म के सभी गीतों को बेहद पसंद किया गया था। अब बताती हूँ इस फिल्म में जो स्टार कास्ट थी उसके विषय में कुछ बातें। फिल्म के लिए ऋषि कपूर को जब साइन किया गया था तो वो फिल्म के लिए पहली पसंद थे, लेकिन शाहरुख खान वाले चरित्र के लिए पहली पसंद शाहरुख खान नहीं थे। शाहरुख खान उस समय तक बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे और टीवी पर कुछ अच्छे शोज उन्होंने किए थे, जैसे कि सर्कस, फौजी और भी कुछ उनकी लिस्ट में शामिल थे। उस समय वो हेमा मालिनी जी द्वारा निर्देशित फिल्म दिल आशना है कर रहे थे। जब इस फिल्म की स्टारकास्ट तैयार की जा रही थी तो गुड्डू धनोआ धर्मेंद्र जी के पास पहुंचे, क्योंकि वो सनी देओल को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। फिल्म की कहानी सुनने के बाद सनी और धर्मेंद्र जी दोनों ने ही इस फिल्म के लिए मना किया और गुड्डू धनोआ को सजेस्ट किया कि इस फिल्म में आप किसी नए लड़के को लीजिए। साथ ही धर्मेंद्र ने बोला कि आप हेमा एक फिल्म बना रही हैं जिसमें एक नया लड़का काम कर रहा है, आप उसे इस फिल्म में ले सकते हैं, उसका काम काफी अच्छा है। गुड्डू धनोआ को एक सजेशन मिला और इसके बाद में उन्होंने शाहरुख द्वारा अभिनीत नाटक और फिल्म के कुछ क्लिप्स देखे, जिसमें उन्हें शाहरुख का काम पसंद आया और उन्होंने शाहरुख को इस फिल्म में साइन कर लिया। तो इस तरह से शाहरुख खान को ये फिल्म मिली। शाहरुख खान से पहले इस फिल्म के लिए कई अभिनेताओं से बात की जा चुकी थी। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी पर। जब फिल्म की कहानी शाहरुख ने सुनी तो वो थोड़ा पशुपेश में थे कि फिल्म को साइन किया जाए या ना किया जाए। पहली चीज तो फिल्म में इतने बड़े अभिनेता ऋषि कपूर काम कर रहे थे। दूसरी चीज, फिल्म को बनाने वाले निर्देशक राजकंवर बिल्कुल नए थे और शाहरुख को थोड़ा डाउट था कि इतनी बड़ी जब फिल्म बनाई जा रही है तो उनमें उनके चरित्र के साथ न्याय किया जाएगा या नहीं, कहीं पेमेंट को लेकर इश्यू तो नहीं होगा। ये सारी बातें बाद में पेमेंट पे जाके साबित भी हुई, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। आइए सुनते हैं एक गीत, फिर सुनाऊंगी इस फिल्म के किस्से।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है दीवाना। तो दोस्तों, दीवाना फिल्म के सभी गीत बेहद पसंद किए गए थे। फिल्म की बनने की कुल लागत आई थी 2.5 करोड़ रुपए और फिल्म ने कमाई की थी 7.25 करोड़ की। इस लिहाज से ये फिल्म उस वर्ष की कमाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। पहले नंबर पर रही थी बेटा, दूसरे नंबर पर रही दीवाना और तीसरे नंबर पर रही थी खुदा गवाह। तो फिल्म में नए हीरो के रूप में शाहरुख खान ने एंट्री की। हालांकि शाहरुख खान के हिस्से में बहुत कम सीन आए थे, लेकिन जितने भी सीन आए थे उनको उन्होंने जीवंत किया। फिल्म में कुल 8 गाने थे, जिसमें से 5 गाने ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माए गए थे। 2 गानों में मौका मिला था शाहरुख खान को, जिसमें एक गाना था ऐसी दीवानगी। जब ऋषि कपूर ने इस गाने को सुना तो उन्होंने कहा कि ये गाना उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन राजकंवर ने उनको समझाया कि फिल्म के जो सिचुएशन है, फिल्म के जो बोल हैं, उस लिहाज से ये गाना शाहरुख खान के ऊपर फिट बैठता है। काफी समझाने के बाद में ऋषि कपूर इस बात पर राजी हुए कि ये गाना शाहरुख खान को करने देना चाहिए। ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। दोस्तों, फिल्म की जो सिचुएशन थी, जो स्टोरी थी, वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसकी एंडिंग में निर्माता निर्देशकों का विचार था कि एंड के टाइम पर शाहरुख खान को मरना होगा। लेकिन ऋषि कपूर ने जब इस एंडिंग को सुना तो वो बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने तुरंत कहा कि यदि आप इस सिचुएशन को लेकर आएंगे तो

दर्शक इस एंडिंग को स्वीकार नहीं करेंगे। कारण यह है कि एक महिला बार बार किसी एक पुरुष से और फिर अन्य पुरुष से विवाह करने वाली स्थिति में नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में उसके पहला पति जो कि उसको छोड़ के जा चुका है, यदि वो उसके जीवन में ना रहे तो ये एंड सार्थक होगा। निर्माता और निर्देशकों ने भी इस बात को समझा और ऋषि कपूर के सजेशन पर ही फिल्म में इसी एंडिंग को रखा गया।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त दीपिका हूं आपके साथ। दोस्तों, 38वें फिल्म फेयर पुरस्कार वाले कंपटीशन में इस फिल्म का नाम खूब महका खूब चहका। फिल्म को नॉमिनेशन मिले थे 7 कैटेगरीज में, जिसमें से 7 कैटेगरी में फिल्म ने पुरस्कार जीते। उस वर्ष का चेहरा रही दिव्या भारती, सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित अभिनेता का पुरस्कार जीता शाहरुख खान ने, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला नदीम और श्रवण की जोड़ी को, सर्वश्रेष्ठ गीतकार रहे समीर गीत तेरी उम्मीद तेरा इंतजार के लिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता कुमार सानू ने सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए अलका याग्निक को मनोनीत किया गया, विनोद राठौर को मनोनीत किया गया और समीर को ऐसी दीवानगी के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन ये पुरस्कार इन्हें नहीं मिले। लेकिन फिल्म ने अपने गीतों से अपनी सफलता के झंडे गाढ़े और अपना नाम काफी ऊंचा किया। इस फिल्म के सभी गीतों को आज भी पसंद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म के जितने भी गीत हैं वो सभी एक अनोखी ताजगी लिए हुए हैं। आइए सुनते हैं इसका एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म का नाम था दीवाना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

हिमेश रेशमिया और अलका याग्निक के गाए फिल्म, अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था चलो इश्क लड़ाएं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म देवदास से। इस गीत को स्वर दिया है श्रेया घोषाल ने।

अभी आपने सुना फिल्म धड़कन का ये गाना। इस गाने को गाया था अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म ब्लैकमेल का ये गाना। और आइए अब सुनते हैं फिल्म बॉबी का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म साजन का ये गाना। और आइए अब सुनते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और विनोद राठौर की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम था मोहब्बतें, और इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम गीत बात और SMS के लिए जो संदेश अब सबसे पहले हमारे पास आया है वो आया है उमाली से अनूप कुमार, उद्धव पाटिल, VS शोगोकर और डॉक्टर जयश्री का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तेलीपारा विलासपुर से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। ये संदेश हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और राहुल खुराना, रचिता केशु और रुदान खुराना की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बुलडाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय और इनके सभी परिवारीजन। अगला संदेश हमारे पास आया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से लिखने वाले श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। ये फरमाइश हमारे पास आई है फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन पारासर, आराध्या और लल्लू पंडित की। और ये संदेश हमें लिख भेजा है मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, मेनका, संगीता, अरुण कुमार, गोदावरी और इनके सभी परिवारीजनों ने। ये फरमाइश आई है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लिखने वाले श्रोता सौरभ, निषाद, प्रकाश, बल्लू, तरुण और श्रीनिका, श्रीनिजा। अगला संदेश हमें लिख भेजा है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी और तमन्ना भाटिया ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है राजनगर से जगदीश, ज्योति, फूलो, विजय, राधा, नवीन, बशनती, जयमंत्री, नवीन, रंगीला, चुलबुल रंगीली और इनके सभी संगी साथी। कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से लिखने वाले श्रोता ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, हैप्पी और इनके सभी संगी साथी। बंगाली पंजा, नागपुर से प्रकाश रमांडे, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल रमांडे। ये संदेश हमारे पास आया है मलकापुर से संजय पाटिल और उषा पाटिल का। ये फरमाइश लिख भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सोरलकर, रतलमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सोरलकर ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म हंसते जख्म का ये गाना।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए अगला संदेश हमारे पास आया है सनावद मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, राजकुमार वोडाना और इनके सभी संगीत साथियों का ये फरमाइश हमारे पास आई है बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनके सभी परिवारजनों की। दतरंगी से लिखने वाले श्रोता हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नौखेलाल वर्मा, ये संदेश लिख भेजा है दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, रजमत, अंजनी, मुरली, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा ने। ये फरमाइश आई है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्रव्या रामटेके की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजेबीए, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजेबीए। ये फरमाइश धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान बाबू की। अगली फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल और भारती बघेल ने। ये संदेश हमारे पास आया है ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कलेर बिहार से बेगम इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी और इनके सभी परिवारजन। ये संदेश कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश, राकेश और ऋषिता का। ये फरमाइश आई है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर की। ये संदेश अकोला से अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश और इधरा इंगले का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। ये संदेश हमारे पास आया है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा का। आइए सुनते आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म हसीना मान जाएगी का ये गाना।

ये संदेश हमारे पास आया है मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक का। ये फरमाइश आई है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं वघेरा दुर्ग से, संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव। ये संदेश हमारे पास आया है कृष्णा कॉलोनी हाँसी।

से सुभाष योगी, सुशील, बब्बू, डब्बू, राजू मेघलानी और बबीता मेघलानी का। अगला संदेश खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविका सिक्का। ये संदेश पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजौरिया का। अगली फरमाइश आई है कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओंकार, साई और इनके सभी संगीत साथियों की। ये फरमाइश जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्बी की। अगला संदेश नेहरू चौक पेंठर से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, सिया, सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता यादव का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मैं खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल, बुलबुल, संजीव, बंटी और इनके सभी परिवारीजन। और ये फरमाइश आई है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनकी सभी संगीत साथियों की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। अगली फरमाइश छत्रपजी शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सैन, सुरेखा, शुभम और अक्षय सैन की। ये फरमाइश आई है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका सिंह की। संभाजीनगर से लिखने वाले श्रोता राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राजेश राजेश और शीतल राजेश। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म गैम्बलर का ये गाना।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए ये संदेश आया है राहुल नगर अमरावती से। लिखने वाले श्रोता सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना प्रणायक, हीरामन और प्रतिभा गोडाने। और ये फरमाइश भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला चीनू, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार की। अगला संदेश शाहजी वोड़खे, नंदा वोड़खे, हनुमान वोड़खे, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े का, हिंगोली महाराष्ट्र से। ये संदेश आया है गांव जखड़ गांव अहमदनगर से नासिर हुसैन पटेल, अमीना और इनके सभी संगीत साथियों का। ये फरमाइश पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसीतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गाड़िये नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और अक्षता लोखंडे। और ये संदेश हमें लिख भेजा है पंढरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक और इनके सभी संगीत साथियों ने। अगली फरमाइश आई है नेहरू पार्क निजामाबाद से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद, फारूक, सईद खलील, करीम और इनके सभी संगीत साथी। और ये संदेश नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता, सूरज और पीआर जैन का। अगली फरमाइश आई है गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी की। अगला संदेश लिखने वाले श्रोता उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश अमन और राधा नामदेव। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, अनीता, ज्योति, संजना, भारती और इनके सभी संगीत साथी ललितपुर उत्तर प्रदेश से। ये संदेश पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर किशोर कुमार के स्वर में फिल्म पिया का घर का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत रांझा गायन। कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी। तो आइए सुनते हैं रांझा गायन।

बोले मैं तो साल 6 महीना की ब्याही आई हूं, मैं अपने माथे क्यों बुराई लगाऊं, जा लिए सबसे छोटी चल दी नहीं, और वाह के पीछे एक एक करके पांचों और चल दी नहीं, जब जंगल की तरफ चल दी नहीं दगरे दगरे, तो केवल सास घर में रह गई। सास ने हाथ को झालो दे करके और कहारन को बुलायो, बोले भैया मेरी बड़ी बहू इतनी बढ़िया बहू है कि मैं आपको का बताऊं, मगर बालक के क्रोध में वहां भी मां की ममता है और मेरी भी मां की ममता है, तो तुम डोली लेकर के और इनके पीछे पीछे जाओ भैया, बादशाह की बेटी हैं, थक जाए तो इनको डोली में बिठा लियो। इधर जब जंगल में पहुंची तो रांझे को मालूम पड़ गई कि मेरी भौजाई मुझे मनावे के लिए आ रही हैं। रांझे ने अपनी अजमत से दिन में रात कर दी नहीं, घनेरी यानी बदरिया एक छोटी सी आई और अंधेरो है गयो दिन में, और सड़क जमीन पे बिच्छू और कांतर भौजाई ने नजर आवे लगे। तो देखो रांझे की बड़ी भौजाई श्रोताओ का तरीके से और अपनी दौरानीन को भड़का रही है।

हे राजे, हम यहाँ के बादशाह हैं तखत हजारे के, अगर धूप ने सताया हो तो बगीचा लगवा दें, और अगर प्यास ने सताया हो तो कंकड़ के माई भी हम कुइया खुदवा देंगे, क्योंकि हम यहाँ के बादशाह हैं। तू अपनी परेशानी तो बता।

श्रोताओ, पता नहीं ये कौन से समय की बात है, उन महापुरुषों ने लिखी और गाई, तो देखो भाभी क्या कह रही है।

मेरे प्यारे श्रोताओं, इससे बड़ा लालच क्या होगा जो छह भौजाई इश्क के लिए तैयार हैं। देवर, तुझको जौन सी भी सुंदर लगे, बियाबान जंगल है, उसके संग अपनो इश्क फरमा ले। जब रांझे ने इतने बड़े लालच को ना मानो तो सेती उन कहारन से बोली कि आप जाओ और कचहरी में जाए करके हैं और जाके भैयन को जंगल को वृतांत सुनाओ। तो भैया कहार चल दिए हैं और डोली बाहर रख के अंदर कचहरी में गए हैं और जंगल को सारो हाल जब भैयन को बताइए तो भैया कैसे चल देते हैं।

छेव भैयन की बात, छेव भौजाइन की बात को रांझे ने काट दियो। धीरे धीरे धीरे धीरे कुटुम कुटुम डंडा टेकती भई और 100 वर्ष की मैया आकर के जब मैया पे नजर पड़ी वो तो पीछे खड़ी है गई कि चलो बेटा मना रहे हैं तो इनकी बात मान ले, मेरी जरूरत नहीं पड़े। तो मैया की ऊपर जब रांझे की नजर पड़ी है तो मैया से रांझो क्या कह

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोक गीत के कार्यक्रम के अंतर्गत रांझा गायन। कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
2: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति।
1: जी धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है।

0: भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृत पत्रिका का कार्यक्रम संस्कृत भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा घर आंगना। इसमें भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी पोषण माह पर। वार्ताकार होंगी बुद्धि मिश्रा और इनसे बातचीत करेंगे जितेंद्र सिंह।

संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवावाणी। इसमें आज की बात होगी दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुण्यतिथि विषयों पर।

रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। संध्या 7:31 पर संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी प्रसारित किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान, आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर अंगना। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं विजय लक्ष्मी।

घर अंगना कार्यक्रम कुसुम बिवारी हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओ कैसी हो, है गए हो काम काज? देखो बहनाओ, जे समय हम काम काज करके जब बैठे हैं ना, तो यूँ लगे आज फुर्सत मिली है तो कछु सिलाई बुनाई निकाल लें, कछु पैरदान अन्य सिल लें, कछु कपड़ा फट गए इन्हें सिल लें। लेकिन जे बालकन की बात आ जावे ना, और इनको धुंध, क्योंकि जे विद्यालय से आके बस्ता फेंक बोतल फेंक जो हुड़दंग मचा में है ना, बातें सबरे काम तो भूल जा मैं और फिर इनमें लग जा मैं। और फिर खोलें इनको टिफिन के विद्यालय से लाए हो तो लगे कि अरे तुम तो सबरे टिफिन वापस ले आए हो, और पानी यूँ ही पड़ो है तो फिर से खावे लग जा मैं कि खांगे ना है तो आगे बढ़ेंगे कैसे। जे एक बहुत बड़ी समस्या है, हर मैया सोचे कि हमारा बालक खाए पी के रिष्ट पुष्ट बने, ताकतवर बने, बीमारी बातें कोसन दूर रहें। क्योंकि जब बालक रिष्ट पुष्ट होएगा तभी तो वो आगे चल के अच्छा नागरिक बनेगा और तो और सफलता हासिल करेगा, और सफल बनवे को प्रयास तो हर कोई करे। पर बहनों, जे सफलता को प्रयास संतुलित भोजन में छिपो भयो है, जा में हम मैया अपना पूरा दिन अपना सर्वस्व कहो ना जइए नछावर कर दे में, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो चौका से ही शुरू होवे। कभू कभू तो मजाक में न्यो ही निकल जावे कि हम सोते नहीं तो पूरे दिन खाते ही रहते का करते, बस जई बात है कह के हंस जावे और फिर नए तरीके से काम कर भी लग जावे। और बहनाओ, जीवन जई को नाम है कि पीछे किए छोड़ के आगे हंस के अपना काम करते चले। और बहन हंस हंस के काम करते करते मालूम ही ना पड़े समय कहाँ बीत जाए। और प्रभु से हमारी प्रार्थना है हमारा जो समय हंसी खुशी भरो भयो ऐसे ही बीत तो रहे। हर माता पिता अपने बालकन को ध्यान रखें, बिनके पोषण को ध्यान रखें, और जब बालक खिलखिलावे ना हंसें तो बड़े प्यारे लगें, बड़े अच्छे लगें। और अभी कृष्ण जन्म भयो है हमारे यहाँ, तो कृष्ण जन्म जब भयो तो लाला की बहुत सारी गतिविधियाँ ने देखें तो मैया यशो

उदय खिलखिला आवे, कभी के मेरे लाला कितना सुंदर लग रहे है, कभी के पीली पोशाक में कितना अच्छा लग रहा है, कभी रोवे तो लगे नजर लग गई है। तो ऐसी गतिविधि में हम ब्रजवासी को सब समय निकल रहे हो, तो आओ बहनों हम इन गतिविधि में भाग लें यशोदा मैया के संग और आनंद लें जस सुंदर से मीठे से लोकगीत को।

0: नाय जो होवेगो तेरो छोना। अबई हमारी बहना विश्वनाथ भैया से सुन रही हती जी बहुत प्यारा सा लोकगीत। बहनाओ बाल हट के आ गए माता पिता, नतमस्तक है जा मैं, हंसे गदगद है जा मैं, क्योंकि माता पिता की दुनिया अपने बालकन के इर्द गिर्द होवे। माता पिता हर समय एक ही बात सोचें कि कैसे हूँ हमारे बालक पढ़ लिख के एक अच्छे व्यक्ति में बने। पर बहनों अभी बात कर रहे हते ना कि पढ़ाई लिखाई अच्छा बनना जी सब चीज हमारे अच्छे पौष्टिक आहार से जुड़ी हुई है और बहनों हौसलन से जुड़ी हुई है कि मैं ना कि हौसला बुलंद होना चाहिए। जिनको हौसला बुलंद होवे का है वो ही कछु कर सकें। मंजिल विनय मिले हैं जिनके सपने में जान होवे, पंखन से कछु नाय होवे हौसले में उड़ान होवे। तो बहनों हौसले को बुलंद हो वो बहुत जरूरी है। तो हौसले बढ़ाए के अपने बालकन के काजे पूरे मन ते सक्रिय है के प्रयास करें, बिनके पोषण को ध्यान रखें और बिनके पोषण के काजे आओ हम जानकारी ले में जा पोषण माह सप्ताह के विषय में। तो बहनों सुनो जा जानकारी को।
1: जैसा कि कुपोषण भारत की नहीं बल्कि विश्वव्यापी समस्या भी है। संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जहां कुपोषण की समस्या विद्यमान है। तो इससे लड़ने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। तो अपने जनपद मथुरा में भी पोषण माह चलाया जा रहा है और इस बारे में हम जानकारी लेंगे।
2: अन्नप्राशन कार्यक्रम
0: बहनों जो जानकारी को हमें दे रही हैं बुद्धि मिश्रा, जो हमारे यहाँ पहले जिला कलेक्टर रह चुकी हैं। तो बहनों आओ ले में जा जानकारी को।
2: आयोजित करते हैं, पोषण क्विज आयोजित करते हैं, पोषण पर पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, पोषण दौड़, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन करते हैं और इन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक करें और पोषण के महत्व के बारे में समझाएं। क्योंकि जब तक बच्चा पोषित नहीं होगा तब तक उसके शरीर का और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। हमारे देश में अगर हम बात करें तो लगभग 30% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है लेकिन अभी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए हर साल हम ये पोषण माह आयोजित करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक कर सकें। अब आपने ये पूछा कि क्या हम विशेष कार्यक्रम करते हैं, तो हर साल जो पोषण माह के आयोजन के दिशा निर्देश हमको मिलते हैं तो उसमें अलग अलग गतिविधियां कुछ विशेष बातों के ध्यान में रखकर की जाती हैं। जैसे पिछले साल जो आयोजन हुआ था उसमें मोटे अनाज को अपने खाद्य पदार्थों में शामिल करने पे खास फोकस किया गया था। आपको मालूम है कि पिछला साल जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी था और सिर्फ ICDS ही नहीं अन्य कई विभागों को इससे जोड़ा गया था, जैसे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, इन सभी विभागों के माध्यम से भी मोटे अनाजों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा था। इस साल की अगर मैं बात करूं तो चार मुख्य गतिविधियों पर इस बार फोकस किया गया है। पहला कि स्थानीय स्तर पर जो खिलौने हैंडमेड उनके बारे में हम किस तरीके से लोगों को जागरूक करें, जो हमारा CSR फंड होता है उद्योगों के पास उसको हम किस तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन हमको चलानी है। दूसरा है कि हम स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन करेंगे इस बार। एक और कार्यक्रम है कि हम एनीमिया मुक्ति भारत के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और एक कैंप का आयोजन करेंगे। और इस बार भी व्यंजन प्रतियोगिता के आयोजन पर खास ध्यान दिया गया है कि हम मिलेट्स को अपने पोषण के लिए हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो हम इस पूरे माह के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी इससे संबंधित कार्यक्रम करेंगे और जनपद स्तर पर भी करेंगे। 4 सितंबर को पोषण रैली के माध्यम से हमारे जनपद में इस पोषण माह का उद्घाटन हो गया है और बहुत से कार्यक्रम डेली आयोजित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज के माध्यम से भी गाँव में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज गोद भराई दिवस का आयोजन था सभी केंद्रों पर। मैं भी खुद एक केंद्र पर गई और वहां 8 गर्भवती महिलाएं थीं, उन सभी की मैंने गोद भराई की। गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन हम इसलिए करते हैं कि जो 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी गोद भराई करते हैं और उपहार स्वरूप उनको एक थाली देते हैं।

0: उस थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां और जो भी प्रोटीन विटामिन से संबंधित न्यूट्रिशियस चीजें होती हैं वो देते हैं, और जो रिचुअल्स के अंतर्गत एक चुनरी उनको ओढ़ाई जाती है वो ओढ़ाते हैं और उपहार स्वरूप थाली देते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो उस गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों को जागरूक करना होता है कि ये महिला गर्भवती है और इसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, तो हमें उसका खास ध्यान रखना है। किस तरीके से हमें खान पान पे ध्यान रखनी है, पौष्टिक चीजें उनको खिलाने के लिए देना है, उसकी सारी जाँचें समय से करानी है, उसको आयरन और कैल्शियम की गोली रोज खाने के लिए प्रेरित करना है, और खाने में विटामिन युक्त सब्जियां होनी चाहिए, प्रोटीन युक्त चीजें होनी चाहिए और दूध होना चाहिए। इन सब के बारे में हम उनको अवेयर करते हैं कि महिला का आप विशेष ध्यान रखिए, साथ ही साथ उसके आराम का भी ध्यान रखें ताकि वो महिला स्वस्थ रहे और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो भी स्वस्थ रहे। साथ ही साथ पहले महिलाओं को गर्भावस्था पूरा हो जाने के बाद संस्थागत प्रसव के बारे में भी जागरूक किया, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग घर में ही प्रसव करा लेते हैं और फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं।
1: अगर हम अपने मथुरा जनपद की बात करें तो यहाँ किस तरह की स्थिति बच्चों में देखी जा रही है और कुपोषण के अंदर किस तरह की श्रेणी के बच्चे हैं, अति कुपोषित बच्चों को लेकर यहाँ क्या स्थिति है?
0: अगर मैं मथुरा की बात करूं तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर 7 माह से 3 वर्ष के लगभग 135,000 बच्चे पंजीकृत हैं। ऐसे ही 3 से 6 वर्ष के लगभग 106,500 के आसपास बच्चे पंजीकृत हैं। तो अगर हम दोनों श्रेणी के बच्चों को मिला दें तो लगभग 142,000 बच्चे पंजीकृत हैं। इसमें जो सबसे गंभीर जो कुपोषण की श्रेणी होती है उसको सैम बोलते हैं, यानी सीवियर एक्यूट मैलनरिस्ट, यानी ऐसा बच्चा वजन के हिसाब से भी अपनी आयु के हिसाब से बहुत कम वजन का होता है और उस बच्चे की हाइट भी जितनी होनी चाहिए नॉर्मल उससे बहुत कम होती है, तो इसको हम सैम बोलते हैं। ऐसा बच्चा कुपोषण में सबसे गंभीर श्रेणी का होता है। तो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जून महीने में पोषण ट्रैकर ऐप जिसमें सारे बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जनपद में 3,629 बच्चे सैम कैटेगरी के थे, लेकिन लगातार हम लोग इस पे अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं और संभव अभियान चल रहा है हमारा जुलाई महीने से। इस संभव अभियान के अंतर्गत हम ऐसे सारे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से, उनकी लगातार उनकी हाइट और वेट की मॉनिटरिंग हो रही है, उनको स्वास्थ्य विभाग से दवाएं दिलवाई जा रही हैं, और जो बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं उनको हम पोषण पुनर्वास केंद्र में भी भर्ती कराकर उनका उपचार कराते हैं। तो अगर मैं पिछले 3 महीनों की प्रोग्रेस की बात करूं, जुलाई अगस्त और अब ये सितंबर चल रहा है, तो 3,629 बच्चों से घट करके अब ये आंकड़ा 2,527 बच्चे रह गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पोषण माह खत्म होने के बाद, पोषण माह के साथ साथ संभव अभियान भी खत्म होगा, तो इन 4 महीनों में हम और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे।
1: अभिभावक अपने बच्चों में अगर देखना चाहते हैं तो कुपोषण का क्या मानक होता है, किस तरह से देख सकते हैं कि कहीं हमारा बच्चा कुपोषण की श्रेणी में तो नहीं जा रहा है?
0: देखिए, हमारे पास बच्चों के कुपोषण की श्रेणी निर्धारित करने का एक चार्ट होता है जो 1 महीने से शुरू होकर 5 साल तक चलता है और वो हर महीने बदलता रहता है। पूरा चार्ट बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की पोषण श्रेणी जानना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र पर चले जाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कहें कि हमारे बच्चे का पोषण स्तर क्या है, कृपया मुझे बताएं। और जो बच्चे पहले से आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर महीने उनका वजन लेती है, उनकी ऊंचाई लेती है और उन्हें उनकी पोषण श्रेणी के बारे में पता होता है। तो हर बच्चे की उसकी आयु के अनुसार वजन और ऊंचाई लेकर के जो ही वो पोषण ट्रैकर ऐप में भरती हैं, तुरंत ही वो ऐप बता देता है कि वो बच्चा आपका सैम श्रेणी में है या मॉडरेट रूप से मैलनरिश्ड है या सिर्फ उसका वेट कम है या उसका वेट और हाइट दोनों कम है, सारी कैटेगरी पता चल जाती है। और अगर आपका बच्चे का सब कुछ सामान्य है तो वो सामान्य श्रेणी में प्रदर्शित होता
2: है। अभी हमारी बहन जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा इनसे बात कर रही थी, इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि जो हमारे बालक हैं बिन की हमें देखरेख करनी है, और अगर हम अपनी क्षमता से ज़्यादा बिन की देखरेख को अनुभव चाहें तो हमें समय समय पे बिन को निरीक्षण करना पड़ेगा, चाहे तो आंगनवाड़ी केंद्र में जा के करें या फिर जिन विद्यालय में वो बालक पढ़ रहे हैं वहाँ जा के पूछें कि हमारा बालक अपना जो टिफिन ला रहे हो भाई खा रहे हो कि ना खा रहे हो, और बच्चन की क्षमता में वको विकास कैसे है रहे हो, और मैया से जो अच्छी नज़र होवे ना वो शायद ही काउ की होवे। मैया अपने बालक को तिल तिल बढ़ते हुए देखे और बाय पता होवे कि हमारे बालक में कहाँ कमी है, पर मैं अनुरोध करूँगी कि अपने आप डॉक्टर ना बने। अगर बालक

में वजन कम दिख रहे हो, बालक पीरो सो दिख रहे हो या सफेद सो दिख रहे हो, तो अपने आप नहीं सोचे कि जब मैं खून की कमी है कि जब मैं पीलो हो रहे हो तो बीमारी है। डॉक्टर से जाए के बड़ी अच्छी तरीके से पाको परीक्षण करा मैं, अगर कोई कमी है तो बा मैं दवाई लें और संग में घर को जो भोजन है बा को तो कहनो ही का, क्योंकि बालकन के काजे तो घर को भोजन दूध दही मक्खन इनसे अच्छा कछु है ही ना सके। तो अपने बालकन को घर को भोजन दें और बिने ये जो बाजार में चमकीले भड़कीले से जो पैकेट बंद भोजन मिल रहे हैं ना बिनते बचा मैं, और बचाएंगे कैसे जी मैया की कार्य कुशलता पे निर्भर करे। अगर हम नेकु आलस को अपनाएंगे तो बालक से कह देंगे कि ले जा पैसा और लिया बाजार से चीज, पर अगर हम सतर्क है के अपनी कमर सीधी करके कहेंगे ना कि ला तेरी पसंद को भोजन हम घर में बना रहे हैं, ला तेरे ताई टमाटर पे नमक मिर्च छिड़कूँ और फिर तू खा देख तेरा मुँह का स्वाद कितना अच्छा होएगा, तो एक मैया की देखरेख एक माली की देखरेख की तरह है। जैसे माली देखरेख करके अपने वृक्षण को बड़े बहुत विशाल बना देवे ना बिनकी लता पतन को लहराए देवे, ऐसे ही मैया अपने नन्हे से बालक को मजबूत खड़ा और स्वस्थ नागरिक बनाए देवे। तो माता पिता से मेरा अनुरोध है कि अपने बालकन को निरक्षर परीक्षण करें, बिनके भोजन को ध्यान रखें, और देखो फिर भोजन करेंगे तो पढ़ाई तो निश्चित ही अच्छी होगी, और पढ़ाई के महत्व की तो जितनी बात करी जाए उतनी थोड़ी है, और पढ़ाई काऊ भी उम्र में है सके बहनों। देखो जी बहन तो अब कह रही है पढ़वे की और गाय गाय के कह रही है, तो सुनो।

अलका राजेश बहन के स्वर में, हमारी बहन सुन रही हती, मैं तो पढ़वे लिखवे जाऊंगी। बहनाओं, पढ़वे लिखवे की कोई उम्र ना है और पढ़वे में कोई शर्म ना है, क्योंकि ज्ञान को जो विस्तार है ना, वो हम काऊ भी उम्र में कर सकें। और बहनाओं, जब ज्ञान बढ़े ना, तो प्रसन्नता, धन, संसाधन, सब चीज़ अपने आप आ जावे और मनुष्य प्रसन्न और आत्मनिर्भर रह जावे। तो बहनाओं, जब हमारे पास प्रसन्नता आवे तो हम अच्छे अच्छे कामन में लगें। तो बहनाओं, जा समय दोपहरिया को समय, बहना आनंद ले रही है काम करके, तो आओ सुनो जे बहुत सुंदर से लोकगीत को।

0: Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts, also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbh for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
2: जी जागृति, देखिए।
1: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
2: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40%

0: वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति
1: जी, धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
4: इंडिया इनोवेशन।
5: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता

0: के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक

0: बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म दर्पण का ये गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म दहलीज से। शब्द रचना कसन कमाल की है, संगीत दिया है रवि ने, स्वर महेंद्र कपूर और भूपेंद्र के हैं।

अभी आपने सुना मुकेश के स्वर में फिल्म का एक दिल सौ फसाने फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये गाना। फिल्म का नाम है एक कली मुस्काई, शब्द रचना

शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया था एसडी वर्मन ने। स्वर लता मंगेशकर का था, फिल्म का नाम था बंदिनी। और इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है

0: द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली से मुलाकात की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में वियतनाम की भागीदारी का स्वागत किया। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक में दोनों पक्षों ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। इससे पहले कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचौ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भारत के दौरे पर हैं। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: रेड बाय शगुन चोपड़ा।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: युववाणी सुन रहे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सी ऐसी चर्चा और बहुत सी ऐसी फिल्मी तराने।

نہ ہو محتاج ہم کسی کے، ایسا دور لائیں گے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اپنی نئی تقدیر بنائیں گے۔ اکیلے چلے تھے جو کل تک اندھیروں کے سفر میں، آج ساتھ آئے ہیں تو ہر طرف اجالا ہوگا۔ साथियों, आज की बात के क्रम में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों के ऊपर। सबसे पहला विषय हम लेकर के आए हैं दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी से संबंधित। इसका सीधा मतलब ये है, दुनिया के विकासशील और गरीब देशों का आपस में हाथ मिलाना और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना। पहले छोटे और गरीब देश मदद के लिए केवल अमीर देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन 12 सितंबर 1978 को अर्जेंटीना में 138 देश एकजुट हुए और उन्होंने ये तय किया कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अपनी तकनीक, ज्ञान और संसाधन आपस में बांटेंगे। इसी सोच और समझौते की याद में हर साल 12 सितंबर को ये दिन खास तौर पर मनाया जाता है।

अमीर देशों का मुंह ताकने की बजाय आपस में मदद करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। सीख और तकनीक बांटना, जैसे कि खेती, इलाज और पढ़ाई जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठाना, दुनिया में अपनी आवाज उठाना, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में सब मिलकर अपने हक की बात रखना।

साथियों, ये दिन दुनिया के विकासशील और कम विकसित देशों, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, इनके आपस में आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग का प्रतीक है।

इसमें सामूहिक आत्मनिर्भरता भी शामिल है, जैसे कि विकसित देशों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय विकासशील देशों को एक दूसरे के अनुभवों और तकनीकों का लाभ उठाने में

मदद मिलती है। ज्ञान व तकनीक का आदान प्रदान होता है, जैसे कि कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीनीकरण ऊर्जा और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सफल मॉडल साझा करना। तो साथियों, ये तो रही हमारी आज की बात, और अब लिए चलते हैं आपको गीतों की दुनिया में और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

हादसा बनकर कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त पर मिले न मदद तो जान पर बन आए तो क्या हो। एक छोटा सा कदम भी किसी की जिंदगी बचा सकता है, अगर हाथ प्राथमिक उपचार का सही वक्त पर बढ़ जाए तो क्या हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा दिवस। जी हाँ, आज है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। ये हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को हम मनाते हैं। ये दिन याद दिलाता है कि अस्पताल पहुंचने से पहले दी गई थोड़ी मदद किसी का पूरा जीवन बचा सकती है। साथियों, फर्स्ट एड केवल पट्टियां बांधना या दवा लगाना नहीं है, ये विपत्ति के समय में समझदारी, धैर्य और तुरंत सही कदम उठाने का नाम है। एम्बुलेंस या डॉक्टर आने के पहुंचने तक जो शुरुआती उपचार हम कर सकते हैं, वही किसी की सांसों की डोरी को टूटने से बचा सकता है। इसीलिए फर्स्ट एड की जानकारी हर घर में हर इंसान तक पहुंचनी जरूरी है। अपने घरों और गाड़ियों में, यहाँ तक कि आपके ऑफिस में भी फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा तैयार रखा कीजिए। बुनियादी प्राथमिक उपचार जैसे CPR, पट्टी बांधना, घाव साफ करना, ये सही जानकारी आपको सीखनी चाहिए। किसी भी सड़क दुर्घटना या आपत्तिजनक ऐसी कोई स्थिति है जिसमें आप मूक दर्शक बनने की बजाय आगे बढ़कर मदद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाथों में मदद का चिराग जलाकर तो देखो, इंसानियत का फर्ज तुम निभाकर तो देखो। बच जाएगी किसी रोते हुए परिवार की खुशियां एक बार प्राथमिक उपचार की ताकत आजमा कर तो देखो।

जी हाँ साथियों, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। साथियों, अगर ठान लो तो राहें खुद आसान हो जाती हैं, मुश्किलें भी पीछे हट जाती हैं। जो मन में उजाला लिए चलते हैं ना, उनके लिए हर अंधेरा भी मात खा जाता है। हार से डरना कैसा जब जीत का सपना साथ है। मेहनत की रोटी में जो स्वाद है, वही जीवन का असली हाथ है। जी हाँ साथियों, कदम कदम पर कभी रुकना नहीं, लक्ष्य अभी दूर है। आज का संघर्ष ही कल की सफलता का नूर भी है। विश्वास रखो खुद पर, तुमने ही ताकत अपार है। जो गिरकर भी मुस्कुराए, समझो वही सच्चा विजेता, जिसके मन में सच्चा प्यार है। जी हाँ, अब बात करते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुण्यतिथि के बारे में। हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक प्रमुख कथाकार, निबंधकार और बहुभाषी प्रकांड विद्वान थे, जिन्हें उनकी अमर कहानी उसने कहा था के लिए सर्वोपरि ख्याति उनको प्राप्त हुई। बात कर लेते हैं उनके जन्मदिन की, तो 7 जुलाई 1883 जयपुर में यानी राजस्थान में उनका जन्म हुआ। मूल निवास उनका गुलेर ग्राम था, जिला कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। माता पिता का नाम लक्ष्मी देवी और पिता का नाम पंडित शिवराम था। मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में ही 12 सितंबर 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। गुलेरी जी ने बाल्य अवस्था से ही घर पर संस्कृत का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, फ्रेंच, जर्मन जैसी कई भाषाओं पर महारत हासिल की। मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने

संस्कृत में भाषण देकर विद्वानों को चकित कर दिया। सुखमय जीवन भारत मित्र में प्रकाशित उनकी ये रचना थी बुद्धों का कांटा। उसने कहा था जो कि ये हिंदी की मील का पत्थर और श्रेष्ठतम कहानियों में गिनी जाती है।

अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी उन्होंने संभाला। उन्हें देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन भी किया और नागरी प्रचारणी पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन किया और उसके साथ ही नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी वो रहे। जयपुर के राज पंडित में के कुल में उन्होंने जन्म लिया जो कि गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। तो आज हम उनको शत शत नमन करते हैं और अब ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में, सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

साथियों, इसी गीत के बाद हम युववाणी कार्यक्रम संपन्न करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल

0: किया गया है?
1: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधिक अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में

0: पूरी तरह अनुचित है। विदेशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्दों की निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी दीपेंद्र।
1: जी धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों का विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती, और रात 10 बजे आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी लेकर हाजिर होंगे शाम 6:50 पर। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे लखनऊ केंद्र से। कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कालिया मर्दन का प्रसंग। कथाकार होंगे रमेश चंद्र शर्मा। समय रहेगा शाम 6:15। शाम 6:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम संध्या वंदन। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सोहानी लेकर हाजिर होंगे शाम 7:31 पर।

कुछ फिल्मी तराने आप सुनेंगे रात 8:09 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे दिल है तुम्हारा फिल्म के कुछ गीत। समय याद रखिएगा रात 8:30। देशभक्ति रचनाएं प्रस्तुत की जाएंगी रात 8:20 पर और शाम 6:10 पर। श्रोताओं, यथा आज का कार्यक्रम विवरण। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार 14 सितंबर 2026 को 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देंगे वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत गुप्ता। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। श्रोताओं, यदि आप बदलते मौसम में नाक कान गला संबंधी समस्याएं जैसे लगातार सर्दी जुकाम, नाक की एलर्जी और नाक का बंद रहना या मास्क बढ़ना, कान बहना, कम सुनाई देना या बहरापन, कान में अजीब आवाजें आना और चक्कर आना, टॉन्सिल और एडेनोडिल की समस्या, गले में खराश या दर्द, गले में संक्रमण, आवाज बैठना और निगलने में कठिनाई, स्लीप एपनिया यानी नींद में सांस रुकना, खर्राटे, थायराइड की असामान्यताएं और सिर दर्द व गर्दन क्षेत्र की गांठें या ट्यूमर आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर निशांत गुप्ता। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 14 सितंबर 2026 और समय दिन में 1:15 पर। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कालिया मर्दन का प्रसंग। कथाकार हैं रमेश चंद्र शर्मा।

भजे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित सो कह रहे हैं, राजा परीक्षित श्री यमुना जी में कालिया नाग को एक कुंड हतो, बाको जल बिस्की गर्मी ते खोलतो रहवे हो, बाके ऊपर उड़वे बारे पक्षियु झुलस के बाग कुंड में गिर जावे। काल इंद्याम काले सच्चदा

चित विषा अग्निना। सुखदेव जी कहने राजा परीक्षित, भगवान को अवतार दुष्टन को दमन करवे के ताई हो है। भगवान ने देखो कालिय नाग को विष बड़ो ही प्रचंड भयंकर है। भयानक विश्व बाको महान बल है। या कारण मेरे विहार को स्थान यमुना जी दूषित है गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में फेंट कस के एक बहुत बड़े कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ताल ठोक के बाद विषैले जल में यानी काली देह में कूद पड़े। यमुना को जल सांप के विष से पहले ते ही खोल रहे हो। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कूद वेते जल और उछरवे लगो। तस् हृदय विरतो भुजदंड घूण वार्गो सुभंग बरवालन विक्रमस्य। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित सो कह रहे, राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण काली देह में कूद के अतुल बलशाली मतवारे गज राज के समान जल उछारवे लगे। या प्रकार जल कीड़ा करवेते जल में बड़े जोर से शब्द है वे लगो। आखनते सुनवे वारे कालिया लागने आवाज को सुनी और देखियो कि कोई मेरे निवास स्थान को तिरस्कार कर रहे हो। त्रम प्रेक्षणीय सुकुमार घना उदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरायतम। देखो कि सामने एक साम्रो सलोनो बालक है। वर्षा कालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। वाको वक्ष स्थल पे एक सुनहरी रेखा है। श्री वस को चिन्ह पीताम्बर धारण किए हुए हैं। मनोहर मुख पे मंद मंद मुस्कान अतन शोभामान है रही है। बालक ने कहूँ ना डर रहे हो। या प्रकार देख के विषैले जल में कीड़ा कर रहे हो। कालिया नाग ने क्रोध में श्री कृष्ण को मर्म स्थान पर डसके अपने शरीर के बंधन से जकड़ लियो। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बध के निश्चेष्ट है गए। कीरंतम प्रतभयम कमलो दर्शस्तु संदस्य मर्मसूर साध। या प्रकार देख के बिन के प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही दुखी भये। भैंसो मूर्छित थे के जमीन पर गिर पड़े। कारण सवन ने सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखियो। गैया बैल बछड़ा बछिया बड़े दुख सो रवावे लगे। गावो वृषा वत्सर्य कृंदमानो सुदुखिता। इतकू ब्रज में पृथ्वी भयंकर तीनों प्रकार से उत्पात है वे लगे। नंद बाबाद गोपन को अशगुन है वे लगे। आ श्री कृष्ण बलराम को घर पे छोड़ कर केलो ही गाय चरावे चलो गये हो। विभेष व्याकुल है गे। अथो ब्रजे महोत पाता स्त्री विधायति दास्त्रो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित ब्रज के बालक वृद्ध स्त्री को स्वभाव बड़ो ही वासल पूर्ण हतो। अपने प्यारे कन्हैया को देखवे की उत्कंठा सो घर द्वार छोड़ के निकल पड़े। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को देखवे के ताई भगवान श्री कृष्ण के चरण चंदन को देखते हुए जल्दी सो यमुना किनारे पे पहुंच गए। ते अन्वेष माणा दैतम कृष्णम सूचतया पदही। बिन ने देखो काली देह में कालिय नाग के शरीर से बधे भय श्री कृष्ण चेष्टा ही नहीं रहे। किनारे पर ग्वाल वाल अचेत परे हुए हैं। गैया बैल बछड़ा बछिया बड़े आर्त स्वरसों रमा रहे हैं। या प्रकार देख के सबरे व्याकुल है गए मूर्छित है के जमीन पे गिर पड़े। अंतर हृदय भुजग भोगो परी तुम्हारा। या प्रकार सो गोपीन को मन श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगो भयो। वे नित्य निरंतर भगवान को सुहाद मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन मधुर वाणी को ही स्मरण करती रह गई। जब बिन्ने देखो कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखे हुए बिन के हृदय में बड़ो दुख भयो। अपने प्राण बल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना बिन को तीनों लोग सूनो दिखवे लगे। ग्रस्ते ऐना प्रियतमे भ्रष दुख तप्तहा शून्यम प्रिय प्रीतम दशतु स्त्रीलोक। भगवान श्री कृष्ण ने बात समय अपने शरीर को बढ़ायो जासो कालिय नाग को शरीर टूटवे लगो। कालिय नाग नाग पास को छोड़ के अलग खड़ो है गयो और क्रोध के मारे फुफकार मारवे लगो। नस्तो भवन परम कसमल मापना गो। भगवान श्री कृष्ण वाक्य बड़े बड़े फन को दबा दियो और उछर के फन के ऊपर सवार है गए और कला पूर्ण नृत्य करवे लगे। नित्यन पदानुन्मयन दम्याम भभूप पुष्प ही। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित सो कह रहे, राजा परीक्षित कालिय नाग के 101 फन यानी सिर हते
जा सिर को नाय झुकातो बाई को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरन सो कुचल देवे जासो कालियनाग की जीवन शक्ति खीर।

है होती जा रही। मुक्ते खून वल्वे लगो बेहोश है गयो, कालिय नाग को प्राण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति भई, तब मन ही मन भगवान की शरण में गयो। साध्यम कृत्या विपुरा समरस्य भर्तृ मोक्ष शरणम शरदम प्रपन्नः। अपने पति की यह दशा को देख के नगपत नाग पत्नी इनके चित्त में बड़ी घबराहट है रही। अपने बच्चान को आगे करके जमीन पे लेट गई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करवे लगी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। हे प्रभु, आपको अवतार दुष्टन को दंड देवे के तई भयो है, आप जा को दंड दे में बाके पापन को प्रायश्चित तक करवे को कल्याण के ताई जासो बाके पाप नष्ट है जामे। हे प्रभु, या नाग के अपराधी है वे पे कछु संदेह नाए, ये अपराधी नाए हो तो सर्व सर्प योनि नाए में बहुत बड़ी तपस्या करी होगी, बड़े ही धर्म किए होंगे, कौन सी साधना को फल प्राप्त हुए है। या नाग ने अपने आपके चरणन की रज इतनी दुर्लभ है कि बाक्य ताई आपकी अर्धांगनी श्री लक्ष्मी जी को सब भोगन को त्याग के तपस्या करनी पड़ी। तपो सुतप्तम कि मेरे नम पूर्व निरस्त माने न च मानो देन। हे प्रभु, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुए और अत्यंत क्रोधी है, प्रभु याकु आपकी परम पवित्र चरण राज रज प्राप्त भई। हे प्रभु, यह मूढ़ है आपको पहचान ना सको, यासो याके ताई क्षमा कर दो, भगवान कृपा करो, यह नाग मरवे वारो है, साधु पुरुष सदासो ही हम अवलान पर दया करते हुए आए हैं, आप हमारे ताई हमारे प्राण स्वरूप पति के देव को प्रदान कर दो, हम आपकी दासी हैं। अनुग्रही भगवान प्राणस्तम जति पन्नग स्त्रीणाम न साधु सोच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित सो कह रहे, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के चरणन की ठोकर अंते कालिय नाग के फन छिन्न भिन्न है गए, बेसुध है गए। जब नाग पत्नी ने स्तुति की नी तब भगवान ने दया करके नाग को छोड़ दियो। धीरे धीरे कालिय नाग की इंद्री में प्राणन में कछु कछु चेतना वही। या प्रकार से कालिय नाग बड़ी कठिन तासो श्वास ले भी लगे, थोड़ी देर में बड़ी दीनतासो हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करवे लगे। वयम खला सौध्याय तामसा दीर्घ मन्य वह। हे नाथ, हम जन्म सो ही दुष्ट तमोगुड़ी भौती दनन के बादव बदलो लेवे बारे हैं, बड़े ही क्रोधी जीव हैं, भगवान हमो तुम्हारी सृष्टि में हैं, आप सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तुम ही हमारे स्वभाव या माया के कारण हो, तुम अपनी इच्छा सो जैसो ठीक समझें, कृपा करें, दंड प्रदान करें। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, कालिय नाग की यह प्रकार प्रार्थना को सुन के लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहो, कालिय नाग, अब तेरे तो यहाँ पे ना रह के अपने जाते वाई पुत्र सीन के संग जल्दी सो निकट के चले जाओ, अब गैया मनुष्य जीव जंतु यमुना जल ग्रहण करेंगी। स्वाज्ञात पत्र दाराद्रयो गो नवी जजतम नदी। मैं जानू कि तुम गरुण के भैंसों रमणक दीप छोड़ के यहाँ देह में आए वसे, अब तेरे ताई कछु भय नाए, तेरे शरीर पे मेरे चरणन के चिन्ह अंकित है गए हैं, या करुण गण तेरे ताई नाए खावेगो, अवे है के निकट के चले जाओ। दीपम रमणकम बिना छद से तमवा उपास्त्रित हो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा प्रीत, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है, भगवान की यह प्रकार आज्ञा पाके कालिय नाग नाग पत्नी ने बड़े आनंद आदर सो नाना प्रकार सो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके वंदना परिक्रमा करी। एव मुक्तो भगवता कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। आज्ञा लेके कालिय नाग अपनी पत्नी के संग बंधु बांधवों के संग रमणक समुद्र में सर्प के रहे वारे स्थान पर चलो गयो। लीला मनुष्य श्री कृष्ण भगवान की कृपा सो यमुना जी को जल विषहीन नहीं भयो, वायु समय अमृत के समान मधुर है गयो, तदैव सामृत जलहा यमुना निर्वसा भवत। श्री सुखदेव जी कहने, राजा परीक्षित, इतकु भगवान श्री कृष्ण व काली देशों बाहर निकल करके आए तो श्री कृष्ण को देख के सबरे ब्रजवासी या प्रकार उठ के खड़े है गए, जैसे प्राणन को पाए के इंद्रियां सचेत है जामे हैं, सबरे गोपन को हृदय आनंद सो भर गयो, बड़े प्रेम सो प्रसन्नता सो अपने कन्हैया को हृदय ते लगाए लियो। यशोदा मैया रोहिणी नंद बाबा गोपी गो सवन ने श्री कृष्ण को पाए के सचेत है गए, सबके मनोरथ सफल।

0: यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णम समेत लब्धेहा आसाम लब्ध मनोरथा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कालिया मर्दन के प्रसंग का। कथाकार थे रमेश चंद्र शर्मा। और आइए अब सुनते हैं भगवती देवी वाशिनी के स्वर में ये लोकगीत।

भगवती देवी वाशिनी के स्वर में अभी आपने सुना ब्रजलोक गीत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभिजीत और साथियों को अभी आपने सुना देव फिल्म में। कार्यक्रम का अगला फिल्मी भजन हम आपको सुन पा रहे हैं अलका याग्निक के स्वर में। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

हरिहरन और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना शिव महिमा फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के ही स्वर में। फिल्म का नाम है सूर्यपुत्र शनिदेव।

सूर्यपुत्र शनिदेव अभी आपने सुना। इस फिल्म का भजन और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो जय हिंद।
1: अपूर्व भैया।
0: हाँ भैया,
1: देखो ये बेरा कितना नीक मौसम हो गया है, अपने ख्यातन तन जाओ तो मन एकदम प्रसन्न हो जाते। काहे तेरे भैया अपनी फसलें ये बेरा देखो लहलहा रहे।
0: बिल्कुल सही कहा। तो भैया चाहे धान हो या अन्य कोई फसलें हो, सम्मा देखो समय से अगर जो सिंचाई हो जाते है, उर्वरक मिल जाते है, तो उम्मा कोनो दिक्कत ना हो, एक बढ़िया फसल के रूप में उसका उत्पादन होते।
1: लेकिन अपूर्व भैया देखो, जब फसलें ख्यातन मैया हैं तो भैया बहुत जरूरत हो जाते है ई बेरा खाद की, पानी की और जौनी चीजें जरूरत की होती हैं।
0: बिल्कुल सही किया भैया। और देखो यूं कहूं ना कहूं देखो चिंता का विषय बन जाते रहा है इसे पहले, लेकिन अब देखो जब से सरकार एक योजना लाई है जी के द्वारा, सीधे किसान भाई के खाते पर पैसा आ रहा है, उम्मा चिंता चली गई है। अब योजना का नाम बताओ भैया।
1: हाँ भैया, योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
0: बिल्कुल, अब देखो तमाम पंच भाई अभी वही अपन केवाईसी तक ना कराए पाए हैं, तो यह उनकी भी यह जिम्मेदारी है, अपने बैंक का जाओ, अपने लेखपाल से मिलो और देखो केवाईसी कराओ, ना कौनो एक पैसा का खर्चा ना होते।
1: हाँ भैया, जाए के अपने जो नजदीकी जनसेवा केंद्र है मैं जाए भैया, बड़ी आसानी तरह करावा जा सकते है। और देखो तुम्हारे खाता में भैया सीधे पैसा आ जाते 2,000 रुपया।
0: बिल्कुल सही कहो भैया। और यू

0: एक दाव नहीं आवत है, यू साल में 3 बार आवत है।
1: हाँ, और अपूर्व भैया हम तो यूँ कहबे कि देखो जौन पैसा भैया आवत है वो अपन जौन काम काज खाते हैं खेती के वही मा लगाओ, यूँ नहीं भैया तिलक मुंडन बस यही वही मा जाए के खर्चा कर रहो।
0: बिल्कुल सही कहो भैया। देखो इससे पहले कहा होता रहा है हम पंचन का साहूकार नजदीक जाए पड़त रहा है पैसा की खातिर अपनी खेती बचाओ माँ, लेकिन जब से यह योजना आई है हमका साहूकार के पास जाए की आवश्यकता ना है, बशर्ते कि हम उनका सदुपयोग करी।
1: हाँ, और अपूर्व भैया देखो सदुपयोग तब हो जाते हैं जब हम पंचन के यहाँ खबरें जो है पता चल जाए।
0: बिल्कुल सही कहा भैया।
1: तो भैया आज की खबरें जान लीन जाए अभिषेक सक्सेना भैया तेरे।
2: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से बीज बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बीज की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर पीएम कुसुम योजना के बीज बुकिंग पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को बीज बुकिंग की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। किसानों को सलाह दी जाती है कि बुकिंग से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन करें। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट है agriculture.up.gov.in।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: भैया
7: हाँ पूर्विया,
6: देखो भैया बारिश का मौसम तो चल रहा है, जहाँ यू एक तरफ हम लोगों के लिए फायदे का है हुए, दूसरी तरफ देखो यू थोड़ा बहुत चिंताजनक भी रहते हैं, चाहे वो अपने प्रति हो या अपने जानवरन के प्रति।
7: हाँ बिल्कुल भैया सही कहा, तो अपने हरहा गोरुन का सब ध्यान रखा है, और ऐसे में यहाँ देखो भैया चारा की बड़ी कमी हो जाती है।
6: हाँ।
7: और वो जो है अगर सही तरह अपने हरहा गोरुन का चारा मिल नहीं पावत है तो बहुत तना करी बीमारी हो जाती है। तो भैया देखो आज की जो बात है वही मैं अपने पंच भाइन का सुनवाया दिन जाए आग बत कही कि बरसात में पशुओं का खान पान और रख रखाव, आई के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्र भैया, तो आओ जाना जाए।
6: बिल्कुल।
8: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं वहां बरसात के मौसम में पशुओं का खान पान और रख रखाव कैसे रखें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक पशुधन विकास डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में पशुओं का खान पान कैसा हो?
9: पशुपालक भाइयों बहनों नमस्कार। बरसात के मौसम में नमी, कीचड़ और दूषित पानी के कारण पशुओं में कई संक्रामक बीमारियां और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में पशुओं के खान पान और रख रखाव में कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है।
8: जैसे
9: बरसात में नया हरा चारा ज्वार, मक्का, बाजरा आदि अत्यधिक मात्रा में न दें, क्योंकि बरसात में केवल हरा चारा देने से पशु में अपच अर्थात इंडाइजेशन, पेट फूलना जिसमें टिम्पैनी और ब्लॉट आते हैं और दस्त की समस्या हो सकती है। हरा चारा 60% के साथ सूखा चारा या भूसा 40% मिलाकर दें,
8: यानी संतुलन बना रहे।
9: हाँ, चारे में हरे चारे और सूखे चारे के बीच में संतुलन रहना चाहिए
8: 60-40 का,
9: 60-40 के अनुपात में। सड़ा गला एवं भीगा हुआ चारा न दें, क्योंकि सड़े गले और भीगे चारे में फंगस यानी फफूंदी लग जाती है और ये फफूंदी जो है पशुओं में जहर फैलाने का काम करती है, जिसको एफ्लाटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और यह एफ्लाटॉक्सिकोसिस न केवल पशुओं के लिए बल्कि पशु के दूध में भी उत्सर्जित होता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
8: डॉक्टर साहब कभी कभी अफरा हो जाता है पशुओं में, वही है क्या?
9: हाँ, अफरा हो जाता है वही है जो

0: गैस भर जाती है। दो तरह की अफरा होता है, एक तो गैस वाला अफरा होता है, एक होता है फ्रॉदी ब्लॉट, झाग वाला अफरा। झाग वाला अफरा ज्यादा खतरनाक होता है बजाय गैस वाले अफरा के।
1: तो डॉक्टर साहब, सूखे चारे और हरे चारे में आपने संतुलन की बात की कि 60%
0: हरा
1: हरा
0: चारा,
1: चारा हो और 40% सूखा चारा
0: सूखा
1: हो।
0: चारा हो जी,
1: साफ पानी जरूरी है।
0: बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, क्योंकि पशुओं की नांद वगैरह जो है और चरही पानी की जो होती है उसकी नियमित सफाई होनी चाहिए, क्योंकि काई लग सकती है जो आगे चल के बीमारियों का कारण बन सकती है।
1: या बासी उसमें भूसा या चारा न रहे।
0: ना रहे, नित्य प्रति सफाई करनी है। पशुओं को हमेशा पोखरों या जमा पानी के बजाय साफ सुथरा नल का या हैंडपंप का पानी पिलाना चाहिए, स्वच्छ
1: जी
0: और ताजा पानी।
1: जी
0: बारिश में पसीने और नमी के कारण पशुओं के शरीर में खनिज लवण कम हो जाते हैं,
1: हाँ
0: अतः है दाने के मिश्रण में 1 से 2% मिनरल मिक्सचर और नमक जरूर मिलाएं। यदि ऐसा संभव न हो तो चारे के साथ साथ 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण पशु के भार के अनुसार और 30 से 50 ग्राम साधारण नमक प्रतिदिन दें, ताकि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और वो अनावश्यक बीमारियों का शिकार न बने।
1: डॉक्टर साहब, चरही के पास क्या नमक का ढोका भी रख सकते हैं?
0: हाँ, चरही में सेंधा नमक का ढेला जो है रख सकते हैं कि जितनी आवश्यकता होगी उतना पशु जो है चाट लेगा।
1: डॉक्टर साहब, जो संतुलित आहार है उसमें सूखा चारा और हरे चारे की बात हो गई, दाना मिश्रण कितना देना है इस मौसम में?
0: दाने में जो होता है, सबसे पहली बात जो है, पशु आहार दे रहे हैं या दाना दे रहे हैं तो उसको नमी वाली जगह पर न रखें। अगर नमी वाली जगह पर रखेंगे तो उसमें फफूंद लग सकती है, फंगस लग सकती है, और ये फफूंद युक्त दाना खिलाने से या तो अफरा की समस्या होगी या विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, एफ्लाटॉक्सिसिस की टॉक्सिसिटी हो सकती है।
1: यानी सावधानी की जरूरत है।
0: सावधानी की जरूरत है। और दाना जो होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम दाना शारीरिक भार मेंटेन करने के लिए
1: अतिरिक्त होगा।
0: अतिरिक्त देना चाहिए, जो ये तो देना ही देना है सभी पशुओं को 1.5 से 2 किलो, और प्रति 2.5 से 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना अतिरिक्त देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रही आहार व्यवस्था, खान पान की बात। अब ये बताएं कि बरसात का मौसम है, पशुओं का रखरखाव भी महत्वपूर्ण है,
0: बिल्कुल,
1: उनकी
0: और
1: आवास व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।
0: हाँ, पशुओं का आवास और रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। पशुशाला को जो है हमेशा सूखा और हवादार रखें,
1: जी
0: वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, फर्श पर पानी का भराव न होने दें जिससे खुरपका, मुंहपका या फूट रॉट की बीमारी से बचाव हो सके। पशु के शेड के चारों ओर पानी जमा न होने दें, ढलानदार फर्श बनाएं, फर्श को सूखा रखें। यदि फर्श कच्चा है तो हफ्ते में 2 बार चूना छिड़कें, ताकि जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। नमी को रोकने के लिए पशु शेड में हवा का आवागमन बेहतर है।
1: जी जरूरी है।
0: अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो नमी बनी रहेगी और पशुओं में भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है स्किन में।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ ईंटे की दीवार है पशुशाला में, तो वहाँ उसकी भी सफाई जरूरी है।
0: उसकी सफाई जरूरी है, चूने से पुताई करनी चाहिए उसकी।
1: अच्छा
0: चूना जो होता है कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा रखरखाव और आवास व्यवस्था। इस समय मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है, तो इसके प्रबंधन के लिए करें क्या?
0: हाँ, बारिश में मक्खी, मच्छर और किलनी बढ़ जाती हैं। इनसे बचाव के लिए नीम का तेल या फिनाइल का छिड़काव करें और बाड़े में नीम और कपूर का धुआं करें। बारिश की शुरुआत से पहले ही गलाघोटू, लंगड़ा बुखार, बीक्यू, खुरपका, मुंहपका एवं लंपी स्किन डिसीज का टीकाकरण अनिवार्य रूप से करवा लें।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ अगर पशु का टीका नहीं लगा है तो क्या अभी भी लग सकता है?
0: हाँ, बिल्कुल लग सकता है। अगर छूटा हुआ है तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और जो पशु छूट गए हैं टीकाकरण से उनको टीका लग जाएगा। वैसे ये टीका कायदे से मानसून से पहले लग जाना चाहिए,
1: सभी टीका,
0: सभी टीका, चारों टीका।
1: लेकिन अगर छूटा है तो अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु डॉक्टर साहब से संपर्क करें।
0: संपर्क करें और वो टीकाकरण करवा देंगे।
1: डॉक्टर साहब, क्या इस समय पेट के कीड़ी की दवा दे सकते हैं?
0: पशु चिकित्सक की सलाह से पेट के कीड़ों की दवा अवश्य खिलाएं, जिससे कि पेट के कीड़े खत्म हो सकें।
1: और जो बाह्य परजीवी हैं उनके प्रबंधन के लिए?
0: बाह्य परजीवी के लिए ब्यूटॉक्स, साइपरमेथ्रिन पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और लगाने की, स्प्रे करने की दवा जो है पशु चिकित्सालय से मिल जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, इस मौसम में अक्सर थनैला की भी शिकायत होती है।
0: हाँ, थनैला की शिकायत होती है, नमी की वजह से थनैला की शिकायत होती है। थनैला में जो होता है कि पशु का ऐन सूज जाता है, उसमें जो है गर्मी सी महसूस होती है। इसके अलावा जो है कभी कभी जो होता है उसमें से पानी जैसा स्राव निकलता है, कभी कभी रक्त युक्त स्राव निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त युक्त स्राव के साथ साथ

0: छिड़े और फटे दूध जैसे थक्के निकलते हैं, ये
1: जी
0: सब मास्टाइटिस की पहचान है। मास्टाइटिस को बचाने के लिए ये करना है कि पशु को दूहने से पहले और दूध निकालने के बाद 1:1000 पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से थन की धुलाई करें लाल दवा से, और दूध निकालने के पश्चात पशु को जो है आधे घंटे तक जमीन पर बैठने न दें, क्योंकि आधे घंटे तक जो पशु की दुग्ध नाल कैनाल है वो खुली रहती है, उसके द्वारा

0: नाल है वो खुली रहती है, उसके द्वारा संक्रमण प्रवेश करता है।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे बरसात में पशुओं के खान पान और उनके रख रखाव के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94 177 202 94 100 77 202 94 177 202।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का बरसात में पशुओं के खान पान और उनके रख रखाव के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: हरे चारे और सूखे चारे का अनुपात जो है 60-40 का अनुपात होना चाहिए। दाना जो है मेंटेनेंस के लिए 1.5 से 2 किलो प्रति पशु होना चाहिए। अगर 2.5 से 3 किलो प्रति दूध पर 1 किलो अतिरिक्त कंसंट्रेट या दाना देना चाहिए। सभी निवारक टीके जैसे HS हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, BQ, FMD, LSD पशु चिकित्सक की सलाह से अनिवार्य रूप से लगवाएं। संक्रमण फैलाव पर रोक बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग करें और उसकी नांद व बर्तन अलग रखें। पशु शेड में नियमित रूप से चूने का छिड़काव करें ताकि नमी और जीवाणु नष्ट हों।
1: डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और बरसात के मौसम में पशुओं का खान पान क्या हो और उनका रखरखाव कैसे हो इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओम भैया, देखो समय हुई गवाह है कि अपने पंच बहन का अपने कार्यक्रम के माध्यम से गौ नहीं सुनवाई दी जाए।
3: हाँ भैया, देखो इतनी बढ़िया जानकारी हो एक बार अगर गौने सुने मिल जाते तो वह क्या आनंद दुगना तिगना चौगुना हो जाता।
2: बिल्कुल, आ सुना जाए।

0: ओम भैया,
1: हाँ पूर्व भैया
0: देखो आज के किसान के अंतर्गत अपने बीच में हैं
1: प्रहलाद कुशवाहा भैया, तो आओ जाना जाए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: किसान भाइयों बहनों। आइए आज आपको ले चलते हैं उन्नाव जनपद के बांगरमऊ ब्लॉक के गनीपुर बेहटा गांव, जहां के प्रगतिशील किसान प्रहलाद कुशवाहा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। प्रहलाद कुशवाहा भैया नमस्कार।
3: जी डॉक्टर साहब नमस्कार, समस्त किसान भाइयों बहनों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: प्रहलाद भैया, आप नॉन मेसी खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब इस समय हमारे खेत में 2 एकड़ मक्का लगा हुआ है, 1 एकड़ में बाजरा की फसल है, बाकी मूंगफली की फसल है। डॉक्टर साहब
2: कुल रकबा कितना है आपका?
3: जी, कुल खेती की जमीन डॉक्टर साहब बात करें तो हमारे पास 2 एकड़ है, बाकी हमने कुछ जमीन जो है लीज पे ले रखी है।
2: तो मक्के की कौन सी वैरायटी है? हाँ
3: डॉक्टर साहब बीज है 33-360 और दूसरी एक वैरायटी हमने लगा रखी है इसी कंपनी की 33-266 और एक और वैरायटी है जो की है 81-81।
2: तो इन तीनों वैरायटी की क्या खासियत महसूस कर रहे हैं?
3: मक्के की अगर हम बात करें इन वैरायटियों की तो बहुत ही बेहतरीन वैरायटियां हैं ये। और अभी इस वर्ष डॉक्टर साहब आपने देखा कि बहुत भयंकर बरसात हुई और ऐसी बरसात में जो है ये वैरायटियां हैं ये सहनशील हैं।
2: अच्छा,
3: और बात करें अगर जो है इन वैरायटियों की तो ये अन्य वैरायटियों की तुलना में थोड़ा जल्दी तैयार और जल्दी पकने में सहयोगी हैं। अभी हमारी मक्के की ये फसल लगभग डॉक्टर साहब 70 दिन की हो रही है और चबाने योग्य हो गई है। बहरहाल ये जितनी भी वैरायटियां हमने लगा रखी हैं बहुत ही बेहतरीन वैरायटियां हैं और अभी तक जो है जब से हमने बोया है तब से लेकर अभी तक पौधों में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पत्तियां नीचे से लेकर ऊपर तक हरी बनी हुई हैं और पौधा बहुत ही अच्छा और जबरदस्त है डॉक्टर साहब।
2: तो बुआई की बात करें, 2 एकड़ आपका मक्का है, तो
3: जी
2: बुआई
3: डॉक्टर साहब,
2: के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक मक्के में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप?
3: जी डॉक्टर साहब सबसे पहले हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर देते हैं जिससे जो है खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं, आधे खरपतवार हमारे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और जो कीट पतंगे खरीफ की फसल में लगते हैं उनके अंडे बच्चे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई से। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब हम अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की पाँच डालते हैं, उसको खेत में मिला देते हैं और हम ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बेसियाना का जो है बना लेते हैं पाँच में मिला करके, उसको जो है बुआई से पहले शाम के समय जुताई के समय डाल देते हैं। फिर उसके बाद में हम मक्के की बुआई सीधी लाइनों में करते हैं और बुआई के समय हम आधी मात्रा में दानेदार डीएपी खेत को देते हैं और बाकी का जो है बीज जो है हम अपने नैनो डीएपी से शोधित करते हैं डॉक्टर साहब। और बीज का शोधन हम ट्राइकोडर्मा से भी साथ ही में करते हैं। जब हमारी फसल 15 दिन की हो जाती है तब हम उसमें जो है दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं, वो भी आधी मात्रा में। शेष जो हमारी होती है स्मार्ट उर्वरक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, इसकी जो है हम 30 दिनों पर स्प्रे कर देते हैं। तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है तो इससे जो है हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है डॉक्टर साहब। और इसमें बात की जाए तो इस वर्ष डॉक्टर साहब थोड़ा जैसे कीट पतंगे की तो हमने कीट पतंगा देखा इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा कम लगा डॉक्टर साहब।
2: जो भी हानिकारक कीट लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनके लिए आप क्या जैविक उपाय भी अपनाते हैं क्या?
3: हाँ डॉक्टर साहब, हमने जैविक उपाय पूरे खेत में जो है ये नीले पीले स्ट्रिक ट्रैप लगा दिए और फेरोमोन ट्रैप भी लगाए थे। और हमने एक जैविक उपाय बनाया था डॉक्टर साहब जिसमें नीम की पत्तियां थी और आंख की पत्तियां थी और कुछ अन्य पत्तियां थी जैसे धतूरा की पत्तियां थी, तो इन सभी पत्तियों को हमने

0: एक ड्रम में सड़ा लिया था और सड़ाने के बाद में फिर हमने उसका स्प्रे कर दिया था और साथ ही में साथ नीम ऑयल का भी स्प्रे किया था, तो जिसका रिजल्ट डॉक्टर साहब हमको बहुत अच्छा देखने को मिला और रसायन हमको ना मात्र जो है डालना पड़ा।
1: यानी इस समय आपकी फसल एकदम रौनक पर है।
0: जी डॉक्टर साहब, इस समय हमारी फसल एकदम रौनक पर है और भुट्टे चबाने योग्य हो गए हैं डॉक्टर साहब इस समय।
1: और पूरी फसल में भुट्टे आ गए हैं।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, पूरी फसल में भुट्टे आ गए हैं और दाने भी पड़ चुके हैं, बस चबाने योग्य मक्का हो चुकी है डॉक्टर साहब।
1: चूंकि पिछले कई वर्षों से लगातार आप मक्का उत्पादन से जुड़े हैं, खरीफ मक्का करते हैं, तो एकड़ में कितना लागत गिरती है, उत्पादन एकड़ में कितना ले लेते हैं और आपकी बचत कितनी होती है?
0: देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जो है लागत की, तो पिछले कई वर्षों से हम करते चले आ रहे हैं, तब तो हमको बीज जो है मोल खरीदना पड़ता था, लेकिन अब इस साल हमको कंपनियों ने बीज जो है हमको ये सब निःशुल्क दिया हुआ था और इसकी वजह से हमें जो बीज का खर्चा आता था वो एकदम से नहीं पड़ा। हाँ, और बात करें अगर लागत की, तो लागत डॉक्टर साहब पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष तो बिल्कुल हमारी ना मात्र लागत आई है, क्योंकि हमने टोटल जो स्मार्ट उर्वरक का प्रयोग किया हुआ है, दानेदार खाद का प्रयोग तो हमने बिल्कुल आधा ही कर दिया, शेष तो हमने जो है पशुओं की सड़ी हुई पांच डाली हुई थी। और रही बात लागत केवल निगरानी की डॉक्टर साहब आई है, और अगर बात करें एकड़ पीछे लागत हमारी जो कुछ भी आई होगी, मुश्किल का ये मान के चलिए एकड़ पीछे 5,000 मुश्किल का मान लीजिए डॉक्टर साहब, इस वर्ष की बात अगर हम करें तो आई है।
1: और
0: और उत्पादन डॉक्टर साहब जिस तरह से हमें फसल दिख रही है, उस हिसाब से हम एकड़ पीछे लगभग 20-25 क्विंटल तक जो है एकड़ में पैदावार ले लेंगे।
1: तो आपका मुनाफा होगा कितना?
0: अब इस हिसाब से डॉक्टर साहब समझ लीजिए कि एक एकड़ में अगर 5,000 रुपये की लागत है, जब 25 क्विंटल हम बहुत कम मान रहे हैं, अगर पैदावार हो जाएगी तो 20 रुपये का भी रेट रखो तो 50,000 रुपये का हमारा मक्का एक एकड़ में तैयार हो जाएगा। 5,000 रुपये हमने लागत रख दी, शेष 45,000 रुपये हमारा एकड़ पीछे बच जाएगा डॉक्टर साहब।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है मक्का उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं तमाम किसान श्रोता भाई बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है महंगी दानेदार खाद के पीछे थोड़ा कम भागिए, और अब आप जो है ये जो मार्केट में नई स्मार्ट उर्वरक आ गई हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। जो लोग कहते हैं कि स्मार्ट उर्वरक अच्छा कार्य नहीं करते हैं, तो वो लोग आकर के हमारे खेत पर देख लें, हम आपको लाइव दिखाएंगे कि देखिए हमारे खेत में स्मार्ट उर्वरक कैसे काम करते हैं। हाँ, स्मार्ट उर्वरक कार्य करते हैं जब आप जो है अपने खेतों में सड़ी हुई पांस डालेंगे और आधी मात्रा में दानेदार खाद डालेंगे, तो स्मार्ट उर्वरक बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कम लागत में अगर आपको अधिक उत्पादन है पाना, तो स्मार्ट उर्वरक को होगा आप सभी लोगों को अपनाना।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा फोन नंबर है 6692-17-96-40, 6392-17-96-40, 6692-17-96-40।
1: प्रहलाद कुशवाहा भैया, आज आपसे टेलीफोन लाइन के माध्यम से इतनी अच्छी बात हुई। आप अपने खेत पर थे, हम स्टूडियो में थे, और जो मक्का उत्पादन की कहानी थी आपकी जुबानी, हम सभी ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ पुर भैया,
3: अपने किसान भाई का अपने कार्यक्रम का पता बता दो।
4: बिल्कुल भैया, आप किसान भाई देखो अपन कार्यक्रम सुनत हैं, उनका कैस लागत है और अपन प्रतिक्रिया देख चाहत हैं, तो अपन जो चिट्ठी पाती का जो पता है वो है भैया कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जो पिन कोड है भैया 226000।

0: 01।
1: तो मेल का भी पता बता दें जाए।
0: हाँ भैया, मेल का पता है फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com। देखो अब चले खोई रही भैया बिरिया, पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया नए भारत का विजन। प्रदेश भर में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय एआई मंथन 2.0 का शुभारंभ। देश भर से आए विशेषज्ञों ने एआई उपयोगिता पर की चर्चा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
6: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
5: 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस सेवा काल को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी सेवा

0: संकल्प अभियान चलाएंगे। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की कार्य योजना साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए भारत का विजन दिया है।
1: प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 से लेकर के उनकी जो ये यात्रा है, ये नए भारत का दर्शन पूरे भारतवासियों को कराता है। एक नया विजन उन्होंने देश को दिया, चाहे वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो, चाहे वह आत्मनिर्भर और विकसित भारत का हो। इसके लिए व्यापक कार्य योजना उन्होंने बनाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देशवासियों को दिया, वेलफेयर की वे स्कीमें दी जो कभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फ्रेजाइल 5 से दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को स्थापित करने का मॉडल प्रस्तुत किया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की वडनगर से काशी तक की यात्रा को भी अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और भव्य दिव्य कुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक चलने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 में पुस्तकों के विमोचन के साथ लेखकों से संवाद और उनकी रचनात्मक यात्रा को समझने का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 57,600 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। इनमें नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़नी चाहिए और आत्मसात करनी चाहिए।
1: आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, अभी मैं आ रहा था, मैंने बच्चों को एग्जाम वॉरियर फिर वहां वितरित की। हर बच्चे को इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। केवल स्कूली छात्र के लिए ही नहीं है, हर युवा के लिए है, हर नागरिक के लिए है, क्योंकि उसको किसी न किसी अवसर पर, किसी न किसी परिस्थिति में उन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है।
0: इस अवसर पर नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद मराठे ने मुख्यमंत्री का शॉल उड़ाकर और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। 9 दिवसीय महोत्सव में पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साहित्यिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल गतिविधियां, कार्यशालाएं और तकनीक से जुड़े आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पावन ग्रंथ समूची मानवता को समरसता, सेवा, सत्य एवं करुणा का अमर संदेश प्रदान करता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य में शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत में मोटर वाहनों, पारिवारिक राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के शमनीय मामलों का निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने आयोजन को उत्साहजनक बताया।
2: बहुत दिनों से लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहे थे हम लोग, तो उसमें बहुत ही हमें उत्साहजनक जो रिस्पांस मिला है। पेंडिंग केसेस जो लोक अदालत में जिनका निस्तारण हुआ है, अभी 6 बजे तक जो हमारे पास न्यूज है, तो पेंडिंग केसेस 5,21,428 केसेस का निस्तारण हुआ है, जिसमें फैमिली कोर्ट, एमएसटी, कंपाउंडेबल मैटर्स, सिविल वाद और अन्य श्रेणी के वाद शामिल है। और प्री लिटिगेशन के जो टोटल वाद है वो 1,15,24,062 अभी तक हमारे पास आए हैं, कि जिनका डिस्पोजल हुआ है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन, उत्तर प्रदेश और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय एआई मंथन 2.0 का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर स्थित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में हुआ।

0: कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न आयामों, शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य, कृषि, शासन, रोजगार और तकनीकी विकास में इसकी संभावनाओं सहित विश्वविद्यालय प्रशासन में एआई की उपयोगिता पर देश भर से आए विशेषज्ञों और शिक्षाविदों द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए MIS, UDIS Plus और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6,55,00,000 रूपये जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार विद्यालय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर सुनिश्चित कर रही है। MIS और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच्चों से जुड़ी जानकारी के बेहतर उपयोग को नई मजबूती मिलेगी। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। फरुखाबाद बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा और अयोध्या बाराबंकी व तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने आज तहसील रामनगर में सरयू नदी के कटान से प्रभावित ग्राम हेतमापुर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
1: हमने उनकी लिस्ट बना ली जिन जिन के घर अनफॉर्चुनेटली कट गए हैं, उनको 1,20,000 की जो शासकीय सहायता है वो दी जा रही है। हमने जगह भी आइडेंटिफाई की है कि कहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल सहायताएं दे होती हैं, चाहे किट हो या कुछ भी व्यवस्था हो, हमारी प्रशासनिक टीम लगातार यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ संवाद कर रही है।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया नए भारत का विजन। प्रदेश भर में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय एआई मंथन 2.0 का शुभारंभ। देश भर से आए विशेषज्ञों ने एआई उपयोगिता पर की चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।
2: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। मैं हूं प्रवीण। आज के इस अंक में हम जानेंगे इस सप्ताह विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में हुए गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे भूकंप क्यों आते हैं।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी।

याद कोई तस्वीर नहीं जिसे दीवार से उतार दिया जाए, वो तो एक खुशबू है जो बरसों बाद भी किसी गुजरते लम्हे में पहचान ली जाती है।

लगती है। हम उसे भूलने निकलते हैं और वो किसी मोड़ पर हमसे पहले खड़ी मिलती है, कभी किसी नाम में, कभी किसी आवाज में, कभी किसी मौसम में छिपकर वो अपना होना जता जाती है। और साथियों, बड़ी अजीब सी बात है, जैसे वक्त बहुत पीछे छोड़ आया होता है, याद उसे हर रोज थोड़ा सा फिर से जी लेती है। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल से नहीं जाती, ये बस हमारी धड़कनों का एक हिस्सा बन जाती हैं। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र खुशबू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में।

साथियों, अब बात कर लेते हैं आपके संदेशों की। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय का। अगला संदेश हमने लिया है जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर और करिश्मा शेख हमसे जुड़े हैं। महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुशे, सुषमा, परिधि और मायरा हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमारे पास आया है मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक, लुबना यश मंसूरी और नवासा है इनका नुमेर मंसूरी। किसी भी गीत में शामिल कीजिए। अगला संदेश हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी का, इनके साथ हैं गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। इन सभी ने हमें संदेश लिखा है हरिद्वार उत्तराखंड से। ये संदेश आया है गुलाम हसन, निषाद बानो, साबरा खातून, सलमान फरमान, नजमीन परवीन, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान, नाजुक, रबी, बेबी फातिमा, हिना फातिमा और रानी बिटिया मदीहा का। इन सभी का संदेश हमें मिला है नजीबाबाद मोहल्ला धर्मदास से। ये संदेश हमारे पास आया है गौतम नगर नादेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले का। महाराष्ट्र से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। अगला संदेश गांव जाखोद राजस्थान से हम तक पहुंचा है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा खटक का। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अगला संदेश हमने लिया है गोयल जिन सनावाद से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद इसहाक, डब्बू डब्लू और माहिरा बेबी आयशा हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश किसी भी गीत के लिए कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा का। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव का संदेश हमें मिला है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अकिता और लक्ष्मी ध्रुव। ये संदेश हमें मिला है दुर्गाई से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी का। अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का। ये संदेश नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, यशफ, रसीद वारसी, मारहरा दरवाजा एटा से इन्होंने हमें ये संदेश लिखा है। अगला संदेश किदवई नगर पुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। ये संदेश मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का हमें प्राप्त हुआ है बिजनौर से। तो सुन लेते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। फिल्म का नाम है आंधी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने।

फिल्म आंधी में आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। अगला संदेश हम ले लेते हैं आप सभी का। ये है शंकर हरिशंकर सोनी, द्रौपदी रानी और परिवार के सभी सदस्य, अंबिका आवास कॉलोनी, फेज बरेली, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। अगला संदेश सनावाद से आया है। यूनुस खत्री, शफी, इंद्रेश, नूर मीना और इरफान मीना, इनके साथ हैं कासिम मीना। ये संदेश आया है वैष्णव कॉलोनी सनावाद से। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद।

मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश ले लेते हैं आप सभी का। भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा हमसे जुड़े हैं। अकोला महाराष्ट्र से जयश्री शेगोकार और रेणुका शेगोकार का हमें ये संदेश मिला है। अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत रोजस भाई, चंडीगढ़ सिटी से शेफाली शेफी डेविस विमला और सतीश अनेजा, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद आयाज अंसारी, एस क्यू राही और उस्मान अंसारी हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश आप सभी का। पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेता और कुसुम नेताम, किसी भी गीत के लिए झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया हमसे जुड़े हैं। राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार हमसे जुड़े हैं हिसार से। अगला संदेश हम तक आया है आप सभी का। पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफजाल और कमाल साहनी महाराष्ट्र नागपुर से इनका हमें संदेश मिला है। नसवाला चौक मलकापुर से संजय और उषा पाटिल का संदेश अभी हमें प्राप्त हुआ है। यादव मोहल्ला से दिलीप मालाकार, सुनीता योगेश मुस्कान, किसी भी गीत के लिए इन्होंने फरमाइश हमें भेजी है। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, किसी भी गीत के लिए। अगला संदेश हमने लिया है गंज डुडवारा से एम फारूक शेख, शेख शमा, परवीन, साइमा, सरफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, वर्षा, सुमन, कीर्ति भारती, देवाश्री और अनुराग मोहन हमसे जुड़े हैं किशनगंज बिहार से। ये संदेश हमें मिला है आप सभी का। अगला संदेश हमने लिया है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का। सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप, अशोक येले, शेरीवड्डी अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनिया का हमें संदेश मिला है बेरड़ी मध्य प्रदेश से। ये संदेश हमने लिया है आप सभी का। चंडीगढ़ से है आप हैं सतीश और विमल अनेजा, किसी भी गीत के लिए याशीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और तैमूर हाशमी, गंज डुंडवारा नई बस्ती से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय का संदेश हमें मिला है। उमाली से अनूप कुमार, उद्धव पाटिल हमसे जुड़े हैं। पलसी से पीएस शेगोकार और जयश्री, सुन लेते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है सागर और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

सागर, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर था किशोर कुमार का। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। धामणगांव महाराष्ट्र से भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल समर्थ दादा, कुमारी सानिका हमसे जुड़े हैं। बर्फगांव नादुरा से शिवाजी और राहुल ओगले का संदेश हमें मिला है। राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तान्या, किसी भी गीत के लिए डबवाली से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। आसलगांव बाजार से राजू माठे, गजानन ज्ञानेश्वर और संजय माठे हमसे जुड़े हैं। ये संदेश हमें मिला है मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। लक्कड़ बाजार खंडवा से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। किसी भी

गीत की फरमाइश करते हुए कच्छ गुजरात से हमारे पास ये संदेश आया है, गंगा वड़कर गोविंद का, विकास प्रीति जूली गीता महिमा विशाल विजय विराट महेश जयंती हमसे जुड़े हैं। ये संदेश नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा हाशमी, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी हमसे जुड़े हैं अजमेर शरीफ से। अगली फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई गायकवाड़, उत्तम कुमार जामदाड़े वाकोड़ी से, कोली नादेड़ से इनका हमें संदेश मिला है, बेबी शालिमा डावर, बेबी हलीमा डावर और जिक्रा डावर हमसे जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, खंडवा से शेख सईद रही और अनस भाई हमसे जुड़े हैं, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर का मैसेज हमें मिला है, योगीराज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती, कविता मोहन, कुशल, विशाल मल्हार, श्याम गोविंद मस्के और सभी साथीगण। अगला मैसेज हमें मिला है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत।

मोहरा फिल्म के इस गीत के साथ ही शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉक्टर पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे, घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूँ। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है।

न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता

0: की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।
1: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद
1: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
2: जी, बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन या जो घोषणा पत्र है
1: जी,
2: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे। परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस दो दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से
1: जी,
2: उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये तीन देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें तीन देश जो इसमें भागीदार हैं, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहां पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहां पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजंस है, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड हैं, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं जो कि पीपल सेंट्रिक हो, जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए, निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर

0: प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में,
1: जी
0: तो ये सभी चीजें इसमें हैं। और मैं समझता हूं जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
1: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने अम्बेसडर सज्जन हार को सुना, उन्होंने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
2: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई। और जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही, तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है। और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टेचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं
1: जी
2: उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना आए इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म
1: जी
2: की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहां पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो पहले एक हिचक होती थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो
1: जी
2: हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
1: आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अब ये समूह परिपक्व हो गया है, उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज, पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
1: अम्बेसडर सज्जन हार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे अंदर, हमारे भीतर काफी अंतर हैं, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
0: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इसके साथ साथ

0: मैं एक और चीज कहूंगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं।
1: जी
0: ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं। और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शंस इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न
1: बिल्कुल
0: है, हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूं परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ। तो जो उन्होंने कहा है जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की,
1: बिल्कुल
0: 40% है इसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रोपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं,
1: बिल्कुल
0: रूस पहले था, अभी यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया सभी मिलकर आ गए हैं। तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा आर्थिक शक्ति है परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है जो ये गुट, हालांकि इसमें इतनी विविधता है परंतु फिर भी ये एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं। और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते
1: जी
0: जिसकी हम बात कर रहे थे अभी,
1: हाँ
0: तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं, परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटरी रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया। पहले सुनते हैं क्या कहा।
2: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है। तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है वो भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इसमें?
3: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा

0: नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप दो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है, और मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देशों पर पड़ रहा है, जो सबसे जो जो विकासशील देश है उन पर पड़ रहा है, और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशंस को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे, और बड़ी शक्तियां ये बात बिल्कुल सही है नहीं सुन रही है। तो कहां उसमें भारत ने जो लीड ली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है, और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स की एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भारत की, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है, और भारत उसको अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, और दूसरा भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल साउथ के देशों में। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की, या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये प्रयास भारत का लगातार जारी है, और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में, भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
1: बात अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर्स से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि UNSC है, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।
2: UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: जी अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है, और ये कितना जरूरी हो गया है?
3: जी, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं, ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे यूएन जनरल असेंबली में, तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो

0: मल्टीलैटरलिज्म हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है. एकदम इतने उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो वहां पर पीस सिक्योरिटी शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए पूरे विश्व में. अब हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 4.5 साल से, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया है. और अभी ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध भी कितने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसमें भी कुछ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई योगदान नहीं दे पाया है. तो इसीलिए उन्होंने कहा है वो उसका कार्यशीलता बढ़ेगी, वो अच्छा अपना काम कर पाएगा अगर वो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है. वही बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वहां पर भी जो लीडरशिप है, वोटिंग राइट्स है, वो आजकल की इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. क्योंकि अगर ब्रिक्स में देखा जाए, चीन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में
1: जी,
0: भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भी हमारे इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु उनको अपना जितना उनका योगदान है उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है. भारत करीब 18% योगदान करता है ग्लोबल ग्रोथ में, परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो उनको
1: उनको आवाज नहीं मिल रही, जितना योगदान है उतनी आवाज नहीं मिल रही,
0: उतनी आवाज नहीं मिल रही और उसको जरूर मिलना चाहिए
1: जी. एक जी. और बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही वो थी कि समुद्री यात्री यानी कि सी फेरर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सुनते हैं क्या कहा.
2: सी फेरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है. मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं. इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा. इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है.
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री ने जो सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जो एक पेशकश की है, अगर हम मौजूदा परिपेक्ष में देखें, खासकर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है और उससे पहले भी उसके साथ साथ और न सिर्फ पश्चिम एशिया में पर और भी हिस्सों में जो भारत विश्व के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, सप्लाई चेन में जो हम आजकल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं, उन सब के मद्देनजर ये जो प्रपोजल, ये जो एक प्रधानमंत्री ने बात कही है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए, ये कितनी अहम है?
3: ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वैश्विक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उसमें सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, ग्लोबल कॉमर्स पर हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं, और जो एक जिस तरह से वैश्विक ढांचा बना हुआ था व्यापार का, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है. और ये बात भारत लगातार कहता रहा है कि जो बेसिक ग्लोबल गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसका प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, गरीब देशों पर पड़ता है, और ग्लोबल कॉमर्स इस तरह से डिस्टर्ब्ड होता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है. पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रहे हैं, तो कहीं पर इसको सुदृढ़ करना, इसमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आपकी मदद कर पाए कठिन से कठिन समय में, जब दो देश युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन कहीं पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉर फाइटिंग के वो प्रोटेक्ट रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है और इसको इसका समर्थन जरूर काफी हद तक न सिर्फ ब्रिक्स के देश बल्कि ब्रिक्स से आगे जो देश हैं, ब्रिक्स के बाहर जो देश हैं वो भी करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, लोगों की लाइवलीहुड पर है, लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है. तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल भारत ने प्रस्तुत किया है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, और अगर ये आत्मसात होता है, अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है ग्राउंड पर, तो इसका बेनिफिट ग्लोबल होगा, न सिर्फ भारत को होगा बल्कि दुनिया में होगा
1: जी. अब बात करते हैं कि आज जो पूरा दिन की गतिविधियां, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की.

0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं, आज आए हैं और उनके साथ आज कुछ देर पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और इन दोनों नेताओं के बीच में ये 3 साल में तीसरी मुलाकात थी। पहले सुनते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपके सकारात्मक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेंसी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमें द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। एक बार फिर भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
0: अम्बेसडर सज्जन हार, दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन, दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक हुई है ये कितनी महत्वपूर्ण है?
2: जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसे आपने बताया, जो ये पिछले 3 साल में तीसरी बैठक है, जो हमारे बीच के जो संबंध थे उनमें बहुत एक शॉक उसको मिला था, बड़ी खटास आ गई थी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जून 2020 में, और वो 5 साल तक चलता रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे और जो हमारे संबंध थे, राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, उनको बहुत ही निचले स्तर पर हम ले आए थे और बहुत से ऐसे अंकुश भी लगा दिए थे भारत ने जो चीन के साथ संबंधों पर। परंतु इसकी फिर से शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब कजान में रूस में ब्रिक्स की समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई और तब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुरू हुआ। और फिर पिछले साल त्यानजिन में मुलाकात हुई, इस बारी बिश्केक में भी 10 दिन पहले मुलाकात हुई, परंतु कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। परंतु आज ये मुलाकात हुई और मैं समझता हूं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था 2024 में अक्टूबर में, जिससे कि हमने वीजा देने शुरू कर दिए थे, फैसिलिटेट कर दिए थे, जिससे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमने फिर से प्रारंभ कर दी थी, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी सी हमने ढील दे दी थी, उसके जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा लिबरल बना दिया था, लूजन कर दिया था। तो ये मैं समझता हूँ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये शुरुआत हुई थी 2024 में और आज की मुलाकात में देखता हूं, देखिए मैं नहीं समझता जो कोई बहुत ही इतना बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं तो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकॉग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शंस किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में, 2020 में तो गलवान हुआ। तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए और वहां पर शांति रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
0: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ, जो इस वक्त मौजूद है भारत मंडपम में। आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी अनुभा
0: जी, आनंद मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
3: अनुभा, ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। सत्र के

0: समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभव,
1: आनंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश है मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए।
2: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलें और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी बता रहे थे, कल भी वार्ताएं होंगी, लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है, वो मुझे लगता है अपने आप में भारत का भी एक जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं भारत की, उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी। और आगे जैसे जैसे ये संबंध और गहरे होंगे, हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
1: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्ष पंत, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है तुम्हारा फिल्म के कुछ गीत।

अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन
1: से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है।

0: इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
0: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
0: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

0: करनी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें

0: गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आरेना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आरेना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरेना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Aryna Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: Here is more from our correspondent.
3: BRICS member countries expressed deep concern over

जूली, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर दिया था किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में कलाकार फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना कलाकार फिल्म का ये गीत। और आइए अब आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं बॉम्बे जयश्री की आवाज़ में रहना है तेरे दिल में का ये गीत।

रहना है तेरे दिल में। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियाँ छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, इस रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं

गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा। हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया, लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा, लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया। उसी निष्ठा से, जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गई। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी मां से होता है। मां के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम मां कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी मां कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल बढ़ रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे

0: नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
1: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृत लाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी सालजोंग का।
2: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है, हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी सालजोंग के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवंत परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
4: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसी सालजोंग, जो कि सन के गॉड हैं। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम्स जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
2: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
3: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
2: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
3: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
4: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथपसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमचु। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सेंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम जक्सान बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
3: पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करना।

0: करने वाला एक खास कलाकार भी होता है, जिसे कहा जाता है मद्गृह। आइए सुनते हैं रियोशन से।
1: तो जो मद्गृह का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गमछा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं। डोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
2: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है, और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
0: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
2: और मैं नेत्रा।
3: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का। गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व, और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति, गणपति बप्पा मोरया।

0: पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल।

0: से 1893 में, यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत विचारवंत बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
1: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
1: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है, हम गुलाल नहीं यूज करते। और तीसरी बात यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर।
4: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
5: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
4: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभर

0: भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
1: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बिहर रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
0: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
1: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
2: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से एक गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालयों और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
3: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज़ वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
1: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
0: और मैं हूँ प्रांजल।
4: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे।

यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादाभाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित A.R. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज

0: कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment